0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: एक रिलेशनशिप का लिटमस टेस्ट क्या होता है, क्या होना चाहिए? दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम माय एक्स बॉयफ्रेंड. वो मुझे एक सिंपल सी चीज कहता था, जब तक एक रिलेशनशिप में मजे आ रहे हैं द रिलेशनशिप इज वर्किंग फॉर यू. जैसे ही रिलेशनशिप में हंसना कम रोना ज्यादा हो जाए, द बैलेंस हैज गॉन क्रेजी, यू कैन डंप द पर्सन. एंड ही सेड दैट इवन फॉर हिमसेल्फ, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. आई ब्रोक अप विद हिम टेलिंग हिम यार मजे नहीं आ रहे. एंड ही लुक्ड एट मी एंड सेड मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं. आई वाज लाइक क्या कर सकते हैं, यही सच्चाई है. एंड वी ब्रोक अप. बट द ट्रूथ इज, अगर आपकी जिंदगी में भी रोना ज्यादा और हंसना कम है, You know what to do. और अगर वो करने में आपको कष्ट हो रहा है, why don't you hit me up and we'll talk about it. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead, do what you need to do. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

छोड़ी है तू अक्सर, पूरी कयामत होगी ना छोड़ी है कोई कसर। टॉप टू बॉटम मार्क्स तुझे दिए मैंने 10 out of 10। क्यों नहीं चाहिए, चल ओके देन। भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो, फिर कल ली तू कौन संभालेगा तुझको जब हो

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी मैं यादवार बोल रहा हूँ ऑयल से। ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: अच्छा अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
2: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4 हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा है तू?
2: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Inefficient,
6: very complex,
7: clumsy और
8: confusion ही confusion.
5: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
11: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारु कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
12: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग।

0: इंडिपेंडेंस, कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इसलिन। अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

good, good, good, good, good, good, oi, good, good, good, good, good, oh, आँखों ही आँखों में कर बातें गुप चुप गुप चुप गुप चुप ओ खुस खुस खुस खुस खुस ओ वे ख्वाबों की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपको पता है ना कि मैं सीक्रेट्स के बारे में क्या कहती हूँ. अगर आपका एक ऐसा सीक्रेट है आपकी जिंदगी में जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कैसी लूजर जिंदगी है भाई.
2: The secret box.
1: And if on the other hand you are a true blue Roshan, तब आपका हर सीक्रेट ऐसा होगा जो पूरे इंडिया को पता होना चाहिए. And if that is the case, feel free to hit me up on Instagram या Facebook. मेरा नाम है Mirchi Roche, नाम की स्पेलिंग है R-O-C-H-I-E. और at this moment मैं आपसे आपका नाम नहीं पूछूंगी, because you will be my mystery caller. और साथ में है मेरी mystery caller. Hi mystery caller.
3: Hi Roshi.
1: What's up?
3: Things are not very good right now.
1: क्यों, क्या हो गया? ये आपके confession के बारे में है.
3: हाँ, obviously.
1: Yeah, tell me. Yes.
3: So, एक shampoo आता है बच्चों का, which says no more tears.
1: हाँ, correct.
3: So I thought let's try it because life में वैसे ही बहुत tears हैं.
1: हाँ, correct.
3: So I used this shampoo and I forgot for some reason to close my eyes.
1: हाँ, correct.
3: And when I used the shampoo, वो shampoo मेरी आँखों में गया.
1: और फिर?
3: और उसके बाद मेरी आँखों से आँसू ही आँसू आते रहे. So this shampoo is not the correct thing for you when you want to stop your tears, because आप रोते ही रहोगे. Because of this thing, I couldn't go to my office, I couldn't work only. मेरी आँखें इतनी जल रही थी क्योंकि
1: Bro, आंखें खोल के कौन शैम्पू करता अपने बाल. आपको सीरियसली रोशनिफिकेशन की जरूरत है. एक गहरी सांस लो और इस बार आप आंखें खोल सकते हो क्योंकि आपकी आंखों में से आंसू नहीं आएंगे.
4: You've been roshified.
1: If I have not told you, then I really love you, mystery caller. Thank you so much for this most amazing, most amusing story. क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इतने सारे relationship confession सुने हैं, लेकिन you want to break up with your shampoo, that's kind of cute. और अगर आप भी ऐसे ही मेरे mystery caller की तरह कोई भी चीज confess करना चाहते हो, because आप और किसी को नहीं बता सकते, because you'll end up sounding really stupid, hit me up on Insta या FB. मेरा नाम है Mirchi Roshi, नाम की spelling है R-O-C-H-I-E. So go ahead, जानू मानू, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: જય ગુરુદેવ. ગાયત્રી ચેતના સેન્ટર પિસ્કેટવે આપને અને આપના પરિવારને ગુરુ પૂર્ણિમા અને રુદ્રાભિષેક મહોત્સવમાં સ્નેહભર્યું આમંત્રણ આપે છે. શનિવાર 1 ઓગસ્ટે સવારે 10 વાગે શિવજી રુદ્રાભિષેક અને સાંજે 5 વાગે વિરાટ દીપ યજ્ઞ. રવિવાર 2 ઓગસ્ટે સવારે 10 વાગે 251 કુંડિયા ગાયત્રી મહાયજ્ઞ, શાંતકુંજ હરિદ્વારના પૂજ્ય સંતો દ્વારા વૈદિક વિધિ મુજબ અનુષ્ઠાન અને ડોક્ટર ચિન્મય પંડ્યાજીની પાવન ઉપસ્થિતિ. 7323578200. જય ગુરુ.
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Roshi Baba! Roshi Baba!
2: काम डाउन मैं भगजनो, अगर आप चाहते हो कि आप एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप में रहो एंड यू आर अ गाय एवरी टाइम योर बेब गोज फॉर अ हेयर ड्रेसिंग अपॉइंटमेंट, ये याद रखना कि अपॉइंटमेंट कब है और कितने बजे, क्योंकि जैसे ही वो अपॉइंटमेंट के बाद आपको मिलेगी, यू डोंट नीड टू नो व्हाट शी इज गॉट डन, ऑल यू हैव टू से इज माय गॉड बेब यू आर लुकिंग स्मैशिंग, और उसे लगेगा कि आप इतने अटेंटिव हो कि एक ट्रिम के बाद भी आपने उसे नोटिस कर लिया. शी विल नॉट रियलाइज दैट दिस इज अ ट्रिक with which you will impress her every single time, no matter how old or new your relationship is. My darling, you're already welcome for this. Aur agar aap aur bhi personalized tips or tricks chahte ho, why don't you hit me up Insta par ya FB par. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ke spelling hai R-O-C-H-I-E. So go ahead, do what you need to do. Lekin, kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: I have finally realized ki ek perfect relationship kaisa hota hai. एक परफेक्ट रिलेशनशिप आपके घर का सबसे पुराना स्कूटर है. कभी आप उस पर बैठकर सवार हो के एंजॉयमेंट करेंगे, कभी आपको स्कूटर को धक्का लगाना पड़ेगा. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर आप हाफ एंड हाफ नहीं करेंगे तो ये काम नहीं चलेगा. अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ नहीं करना, आई जस्ट हैव टू सिट बैक एंड एंजॉय माई सेल्फ और पार्टनर सारा काम करेगा, ये तो आपके घर का स्कूटर भी नहीं करता है यार, पार्टनर कैसे करेगा. वंस यू फिगर दिस आउट ना, जिंदगी इतनी आसान हो जाती है. और उससे भी ज्यादा अगर आप लेजी इंसान है कि हाफ एंड हाफ वर्क इज टू मच रोसी, तो मेरी तरह सिंगल हो जाओ, काम ही नहीं करना पड़ेगा. जो भी काम है अपने लिए करोगे, उससे ज्यादा एक और चीज नहीं. एंड इफ यू लव द लाइफ ऑफ सिंगलडम, Why don't you hit me up, ताकि हम अपने नोट्स कंपेयर कर सकें और अपने फेलो कपल्ड लोगों का मजाक उड़ा सकें. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead, darling, hit me up, do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.
2: हेलो
3: सुमन जी, गुड इवनिंग. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st फ्लोर. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनसाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला
3: है. वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकता हूँ मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम. ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: यार
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया. रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है. अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं. मैं अभी आपको कॉल बैक.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू linemtg.com.
6: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे.
7: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा.
8: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
5: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. यस, योर एंटायर बिजनेस. Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपकी जिंदगी की भसड़े खत्म नहीं होती हैं और उन्हें सॉल्व करने के मेरे सॉल्यूशंस खत्म नहीं होते हैं. सो फॉर ऑल दोज पीपल आउट देयर, स्पेशली ऑल द गाइज जिन्होंने मुझे इतने सारे इनसेसेंट डीएम्स लिखकर भेजे हैं कि यार हम भी अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, हम भी क्यूट दिखना चाहते हैं, हमारी डेट्स भी अच्छी हों, आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए मेरे साथ बैक अगेन ऑन द शो इज डाइटिशियन शिल्पा चावला. हाय शिल्पा.
2: हाय रोशे.
1: थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो शिल्पा. एंड मेरा आपके लिए आज का सवाल है, फॉर ऑल दोज गाइज जो लीन हैं और बल्क अप करना चाहते हैं लेकिन जिम नहीं जाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू लुक इक्वली अट्रैक्टिव, वो क्या कर सकते हैं थ्रू देयर डायट टू काइंड ऑफ बल्क अप?
2: सो ग्रेट

0: इफ समबडी इज लीन उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई ओवरवेट है और बल्क करना चाहता है पहले तो उसको अपने आइडियल वेट पे आना पड़ेगा बल्किंग स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, और बिना एक्सरसाइज के बिना जिमिंग के बल्किंग थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि उससे शेप नहीं आएगी एंड यू विल नॉट लुक द वे यू वॉन्ट टू लुक इफ यू विल नॉट डू डंबल एंड हैवी वेट एक्सरसाइज। बट एज पर द डाइट इज कंसर्न्ड हमें हर मील में 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाना है। प्रोटीन आपके एवरी मील में होना चाहिए, हर मील में होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी मसल्स मेंटेन होंगी और बहुत सुंदर से क्रिएट होंगी, मसल मास अच्छा बनेगा। क्या खाएं उसके लिए, एग ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, मीट ले सकते हो, दालें, लेग्यूम, चीज, डेयरी प्रोडक्ट एक्सेट्रा, आप ये सब अपने ईच मील में ऐड कर सकते हो। आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने की जरूरत है, होता क्या है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, आपको उसमें होल ग्रेन्स डालना है, मिलेट्स डालना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम। प्री वर्कआउट लेना बहुत जरूरी है, खाली पेट एक्सरसाइज करने मत जाना, उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज नहीं होगा तब तक आपका अच्छा मसल मास नहीं बन सकता। तो प्री वर्कआउट में क्या लें, लेट्स हैव ओट्स मील, लेट्स हैव अ टोस्ट एंड अ टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर, एक उबला हुआ आलू या फिर स्वीट पोटेटो शक्करकंदी उबली भी ले सकते हैं, एक कटोरी उबले हुए चावल भी ले सकते हैं। जैसे प्री वर्कआउट इम्पोर्टेंट है वैसे ही वैसे आफ्टर वर्कआउट पोस्ट मील भी इम्पोर्टेंट है। वो हाई प्रोटीन होना चाहिए और कार्ब रिच होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लंच पूरा, एक पूरा कंप्लीट मील जिसे कहते हैं, या डिनर, कोशिश करें आपका वर्कआउट उस समय पे हो कि आपका लंच पे आप लैंड करें या डिनर पे लैंड करें, ओके। एंड 7 से 8 घंटे की नींद होना बहुत जरूरी है सो दैट मसल रिकवरी अच्छी हो और आपकी शेप अच्छी आए आफ्टर डूइंग वर्कआउट। एक क्रिएटिन होता है, हमें क्रिएटिन लेना चाहिए, उससे हमारा मसल स्ट्रेंथ एंड मसल साइज बहुत अच्छा बन जाता है। एंड लास्टली दैट्स व्हाट आई सेड, गुड वेट ट्रेनिंग एंड रेस्ट मेक्स अ बल्की ब्यूटीफुल मेल। जो एक अच्छी बॉडी चाहिए होती है ना, एक मस्कुलर लुक, वो तभी बन सकती है अगर हम अच्छा वर्कआउट करते हैं और अच्छा रेस्ट करते हैं।
1: वाओ, दैट इज सो किलर। अगर अभी तक आपने इनको नोट्स में नहीं कन्वर्ट कर लिया है देन यू कैन सेंड मी योर DM एंड आई विल बी हैप्पी टू राइट दिस आउट फॉर यू। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक डार्लिंग, बट व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। थैंक यू शिल्पा फॉर बीइंग ऑन बोर्ड विद अस एंड आप सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: I agree कि हर इंसान के एक मिलियन फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं और अगर आपको फॉलोअर्स की इतनी जरूरत है then why don't you just buy them darling instead of making your girlfriend या boyfriend के मम्मी पापा your friends on Facebook या Insta. See the thing is हम सबको पता है कि हर दो तीन महीने में एक टाइम तो आता है when you want to block your partner because they're just being so cringe or creepy. लेकिन जब आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया होता है उसके मम्मी पापा का क्या करोगे? उन्हें भी ब्लॉक करोगे तो बदतमीजी लगेगी, उन्हें नहीं ब्लॉक करोगे तो योर पार्टनर विल जस्ट स्टॉक यू फ्रॉम दैट अकाउंट. सो एक्चुअली दिस इज अ लूजिंग प्रोपोजिशन फॉर यू विच एवर वे यू लुक एट इट. ऑल्सो अगर मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की मम्मी मेरे इंस्टाग्राम पर होती तो जो सब मैं इंस्टाग्राम पर करती हूँ आज कर नहीं रही होती मुन्ना. ऑन दैट नोट यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड डार्लिंग, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं. अपनी आंखें बंद करो. अगर आप ड्राइव कर रहे हो तब मत करना, लेकिन अगर ड्राइव नहीं कर रहे हो तब अपनी आंखें बंद करो. क्योंकि मैंने आज ये नोटिस किया व्हेन आई वाज कमिंग टू वर्क अपनी कैब में. आपने गाड़ी की एनाटॉमी कभी देखी है ध्यान से? विंडस्क्रीन जो होता है गाड़ी जितना बड़ा होता है, और जो रियर व्यू मिरर होता है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है. और शायद जिंदगी का भी यही एक रूल है कि हम जहां जा रहे हैं उसका पर्सपेक्टिव बड़ा होना चाहिए. हम जो पीछे छोड़ा है यानी कि रियर व्यू मिरर, वो पीछे ही बेस्ट है. उसका छोटा सा पर्सपेक्टिव हो तो भी चलेगा, क्योंकि अटेंशन हमेशा आगे होनी चाहिए, पीछे नहीं. और अगर गाड़ी में भी अगर आपकी अटेंशन पीछे होगी तो गाड़ी आगे कैसे चलाओगे, ये मेरी मम्मी हमेशा कहती थी. एंड आई गेस दैट्स ट्रू. यू नो, एक गाड़ी से मैंने जितना कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में सीखा है आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू. अगर मेरे दिमाग में कोई और गाड़ी एंड लाइफ के कंपैरिजन याद आए तो पक्का आपको इन द ड्यूरेशन ऑफ दिस शो जरूर बताऊंगी. लेकिन अगर मेरी मम्मी की तरह आपकी मम्मी भी कोई लाइफ या रिलेशनशिप एडवाइस देती है विच हैज रियली वर्कड आउट वेल फॉर यू, व्हाई डोंट यू शेयर इट विद मी. आज मैं अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही हूँ. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरी मॉम मुझसे बहुत दूर नहीं है, पहाड़ों में है, बट इट फील्स लाइक दूर इनफ. अगर आप भी अपनी मॉम को मिस कर रहे हो देन ऑल्सो

0: Merci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidba la burka.
1: Merci, burka. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या
2: बात है सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ

0: पागल पागल
1: अब तो देने पड़ेंगे सर।
0: हेलो
1: अब तो देने अब तो फंस गए देने पड़ेंगे अब तो फंस गए देने पड़ेंगे।
0: कौन बोल रहा है विपिन?
1: नहीं सर तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
0: पागल के दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे
1: अब तो फंस गए सर।
0: हेलो
2: सर आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया।
0: उसका पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
0: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी। अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपको पता है ना कि मैं सीक्रेट्स के बारे में क्या कहती हूँ. अगर आपका एक ऐसा सीक्रेट है आपकी जिंदगी में जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कैसी लूजर जिंदगी है भाई.
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: एंड इफ ऑन द अदर हैंड यू आर अ ट्रू ब्लू रोशन, तब आपका हर सीक्रेट ऐसा होगा जो पूरे इंडिया को पता होना चाहिए. एंड इफ दैट इज द केस, फील फ्री टू हिट मी अप ऑन इंस्टाग्राम या फेसबुक. मेरा नाम है मिर्ची रोशे, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. और एट दिस मोमेंट मैं आपसे आपका नाम नहीं पूछूंगी, बिकॉज यू विल बी माई मिस्ट्री कॉलर. और साथ में है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हाई मिस्ट्री कॉलर.
3: हाई रोशी,
1: व्हाट्सअप.
3: Things are not very good right now.
1: क्यों, क्या हो गया? ये so, आपके confession के बारे में है.
3: हाँ, obviously.
1: Yeah, tell me. Yes.
3: So, एक shampoo आता है बच्चों का, which says no more tears.
1: हाँ, correct.
3: So I thought let's try it because life में वैसे ही बहुत tears हैं.
1: हाँ, correct.
3: So
1: also true.
3: I used this shampoo and I forgot for some reason to close my eyes.
1: हाँ, correct.
3: And

0: व्हेन आई यूज द शैम्पू वो शैम्पू मेरी आंखों में गया
1: और, फिर?
0: और उसके बाद मेरी आंखों से आंसू ही आंसू आते रहे. सो दिस शैम्पू इज नॉट

0: क्या खा लिया
1: सरदार? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

मेरे हिसाब से ना आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, स्पेशली जब मैं आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देती हूँ, यू थिंक कि मैंने पढ़ा ही नहीं है। कभी कभी मैं आपके मैसेजेस संभाल के रखती हूँ सो दैट आई कैन आंसर देम व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू ऑन रेडियो। जैसे मेरे को तुषार ने मैसेज लिखकर भेजा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को, मतलब होने वाली गर्लफ्रेंड को, ये बताना है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, बट मैं नॉर्मल बंदों की तरह कुछ नहीं करना चाहता। आई रियली लाइक हर और हम इकट्ठे चिल करते हैं, बट एक तरीका बता जिससे मैं उसे आई लव यू बोलूँ तो वो जिंदगी भर कभी ना भूले। एक्चुअली तुषार, मैं ये सोच रही थी कि आप एक काम क्यों नहीं करते, उसे डिनर पर ले जाओ या अपने घर बुला लो डिनर के लिए, दैट वुड बी परफेक्ट, और अपनी मम्मी की लिपस्टिक चुरा लो, ठीक है? अब वो कभी ना कभी तो वॉशरूम जाएगी, राइट? तो आप वॉशरूम में शीशे के ऊपर बड़ा बड़ा लिपस्टिक से लिख देना, रिचा आई लव यू। आपने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं बताया, बट मैं तो जनरली कोई भी बोल रही हूँ, तो जो भी उसका नाम है वो नाम एंड आई लव यू इन लिपस्टिक ऑन द शीशा, शी इज गोइंग टू टोटली लव इट। लाइक इट्स जस्ट सो रोमांटिक। और उसके बाद नेचुरली वो आपसे पूछेगी कि आपके पास लिपस्टिक कहाँ से आई, तो आप बोल देना कि मम्मी की लिपस्टिक है, इनकेस शी थिंक्स कि आपने किसी और लड़की की

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in...
3: हर फ्राइडे बॉलीवुड डिसाइड करता है कि इस हफ्ते कौन सी कहानी ट्रेंड करेगी, कौन सा हीरो मास्क लगेगा, कौन सा ट्रेलर इंटरनेट तोड़ देगा एंड कौन सा गाना शादियों में बजेगा। लेकिन असली सवाल हमेशा सेम रहता है, इस शोर में क्या टिकने वाला है? क्योंकि हाइप तो बहुत चीजों की बन जाती है लेकिन लेगेसी बहुत ही कम की होती है। एंड इस वक्त हिंदी सिनेमा एक अजीब से फेज में है। सुपरस्टार्स अब भी बड़े हैं लेकिन ऑडियंस उनसे भी बड़ी हो चुकी है। हम इंस्टेंटली जज करते हैं, इंस्टेंटली ट्रोल करते हैं, इंस्टेंटली वर्शिप करते हैं। एक रील करियर बना देता है और एक फ्राइडे नैरेटिव बदल देता है। लेकिन फिर भी हर हफ्ते कुछ गाने ऐसे आते हैं जो शोर को काट देते हैं, कुछ फिल्म्स जो सिर्फ चलती नहीं कल्चर बन जाती हैं, एंड कुछ आवाजें जो प्रूव करती हैं कि बॉलीवुड अभी भी दिल से जिंदा है। तो चलो इस हफ्ते के बिगेस्ट सॉन्ग्स, बिगेस्ट स्टोरीज और बिगेस्ट बॉलीवुड पल्स को डीकोड करते हैं। दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड आई एम योर होस्ट सुरेन सुंदरम। एंड गाड़ी शुरू होती है विद द मोस्ट डोमिनेंट फिल्म एंड उसका ये डोमिनेंट टाइटल ट्रैक आपने सुना है, बहुत बार सुना है।
4: नंबर 20 ना दे दिल पर देती मुंह तेनू नित दारूणा।

बॉलीवुड में अगर किसी कंपोजर ने हमें ये सिखाया है कि म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं फील किया जाता है, then it has to be A.R. रहमान। लेकिन रहमान साहब का म्यूजिक आजकल पहले जैसा इंस्टेंट हिस्टेरिया क्रिएट नहीं करता, और शायद वो प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो डिजाइन है। क्योंकि रहमान साहब के गाने फास्ट फूड की तरह, बर्गर्स पिज्जाज की तरह बिल्कुल नहीं होते। They are like slow poison. पहली बार सुनो कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, दूसरी बार सुनो तो इंट्रीगिंग लगते हैं, और फिर एक दिन अचानक गाना आपके अंदर घर बना लेता है। रहमान साहब मेलोडी को स्पून फीड नहीं करते, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, टेक्सचर्स, साइलेंसेस, ट्रेन साउंड, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्गिंग, और इसीलिए उनके गाने वायरल कम होते हैं, डिस्कवर ज्यादा किए जाते हैं।

0: इनिशियली लोग बोल रहे थे ये तो बहुत डीप है, आज ये एक इमोशनल एंथम बन गया है। और अब मस्कारा को देखो, फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, इम्तियाज अली, दिलजीत दोसांझ, रहमान साहब, इरशाद कामिल, ये कोई लाउड चार्ट बस्टर नहीं है, ये वो टाइप का गाना है जो शायद 3 महीने बाद सडनली आपको हिट करेगा। और ऑनेस्टली मुझे लगता है बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग म्यूजिक ट्रेंड यही होने वाला है, द स्लो बर्न एल्बम्स, एल्बम्स जो पहले ग्रो करती हैं और फिर एक्सप्लोर करती हैं। एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ विद चांद मेरा दिल। पहले लोग बोल रहे थे यार अच्छी एल्बम है, अब हर हफ्ते एक नया गाना इमर्ज हो रहा है और इस वक्त द लेटेस्ट वन इज मेकिंग सीरियस नॉइज। फ्रॉम चांद मेरा दिल, कंपोज बाय सचिन जिगर, राघव चैतन्य और जुनीता गांधी की आवाज में, दिस इज खासियत, डेब्यूइंग ऑन नंबर 18।
1: नंबर 18।

0: प्रवीण के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: हाय शिवानी
1: हाय
2: शिवानी कंग्रेचुलेशंस मुबारक हो गाड़ी खरीद ली
1: हाँ थैंक यू वेरी मच आप कौन बोल रहे हैं
2: शिवानी कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया अरे ग्रेट मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
1: समाचार
2: ग्रेट माइलेज मुझे बताओगे कितना है
1: ठीक ठाक है 13-14 के करीब पड़ जाता है आप कौन बोल रहे हैं
2: अच्छा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में
1: चला रही हूँ काफी दिन हो गए मेरे को पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई
2: ओके शिवानी आप मेरा थोड़ा सा मैं वही बता रहा हूँ शिवानी आप मुझे नहीं जानती है अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा
1: आपको लेनी है क्या
2: नहीं नहीं नहीं मुझे नहीं लेनी अब मैं आपको बता देता हूँ ये हमारा है ना
1: हाँ?
2: इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो मैं उनसे बात कर रहा हूँ ज़ोबी शराब मैं बात कर रहा हूँ उनसे अभी कर लेना शिवानी ये 3 दिन से रोके हुए इसका हुआ नहीं है नई गाड़ी कोई दिखी नहीं इसको करना है आप ले आएंगे वो टायर के पास
1: नहीं आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना खरीद नहीं सकता मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है
2: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार इसका ये कब से रोके हुए वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी
1: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले
2: ये सिर्फ 3 अच्छा एक टायर पे करेगा शिवानी एक टायर पे करेगा
1: सिर पे करवा ले
2: शिवानी
1: हेलो
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ इसका निकल जाएगा इसका निकल जाएगा इसका निकल जाएगा अच्छा मेरी बात
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं खुद के कुत्तों जैसे ना आपने कुत्ते का इलाज
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज फोन करना शिवानी मेरी बात सुनो
1: नहीं नहीं
2: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ मेरी बात सुन लो प्लीज अतुल ने मुझे नंबर दिया था ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारा मुर्गा बन गया है कंग्रेचुलेशन तुमने नई गाड़ी ली है यार ज़ोबी शराब वो गाड़ी ला रही है टायर पे कर लेना
1: कुकड़ू
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं पर बच्चन एक ही होता है
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है एक ही होता है जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 14

0: बॉलीवुड का मूड कितनी जल्दी स्विच होता है। अभी जो गाना आपने सुना प्रेम की लीला फिल्म कृष्णावतारम, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और जावेद अली ने। ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन है, ओल्ड स्कूल डिवोशन, नो ईडीएम ड्रॉप्स, ना कोई फोर्स्ड कूलनेस, बस सुर हैं, भाव हैं और सिंसियरिटी है। एंड देखो, ऑडियंस ने उसे सीधा दिल में जगह दे दी। डेब्यू किया इस गाने ने नंबर 14 पर, और शायद इसीलिए म्यूजिक का साइंस अब पहले से ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि कब क्या कनेक्ट कर जाए नोबडी नोज एनीमोर। और इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए था कॉकटेल का वो गाना जब तलक। यार जरा सोचो, अरिजीत सिंह, प्रीतम दा, अमिताभ भट्टाचार्य, एंड देन यू गॉट शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना एंड कृति सैनन। ये लाइनअप देख के तो लगता है कि गाना चार्ट पे आएगा नहीं, सीधा कब्जा कर लेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। गाना आया तो सही, लेकिन इम्पैक्ट नहीं बना। इनफैक्ट टॉप 10 तक भी नहीं पहुंच पाया, और क्वाइटली इस काउंटडाउन से एग्जिट मार चुका है। और शॉक इसलिए भी ज्यादा लगता है क्योंकि शाहिद और प्रीतम दा का म्यूजिकल पार्टनरशिप तो हिस्टोरिकली लीथल रहा है।
1: साड़ी के पाल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे।
0: ये वो कॉम्बो है जो फुल मैडनेस को भी एक म्यूजिकल इवेंट बना देता था। इसके बाद जरा सा मूड स्विच कर लो।

0: हार्ट का पानी। एंड सडनली वो सेम डुओ हार्ट ब्रेक को इतना सॉफ्ट बना देता है कि आदमी खिड़की के बाहर देखना शुरू कर देता है, वो भी बिना किसी रीजन के। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट दिस सॉन्ग।
1: तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही।
0: बस यार ये गाना तो कल्चरली इमॉर्टल है। ऐसे गाने रिलीज नहीं होते, अडॉप्ट किए जाते हैं। इसलिए जब तलक का इतनी जल्दी फेड हो जाना जेन्युइनली अनएक्सपेक्टेड था एंड मेरे लिए काफी शॉकिंग भी। लेकिन फ्रीदंदा का गेम खत्म समझना गलती होगी। भूत बंगला का राम जी आके भला करेंगे नंबर 13 पर पहुंचा इस हफ्ते। लेकिन कॉकटेल का जो अपकमिंग गाना है माशूका, वो मैंने सुना है एंड दैट वन साउंड्स फार मोर डेंजरस। लेकिन अभी फ्रॉम एन ईरा व्हेन शाहिद कपूर एंड प्रीतम दा सिंपली कुड नॉट मिस, ये वाला गाना है फ्रॉम मौसम जिसे गाया है शाहिद माल्या ने। रब्बा मैं तो मर गया ओए, माय पिक ऑफ द वीक।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. नंबर 5.

0: कभी कभी एक फिल्म खत्म होने के बाद भी वो खत्म नहीं होती। धुरंधर और धुरंधर 2 एग्जैक्टली वैसी ही फिल्म्स निकली। सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं, कल्चरल टेकओवर किया, मीम्स आए, फैन एडिट्स आए, एक्शन सीन्स वायरल हुए। लेकिन सबसे डेंजरस चीज पता है क्या हुई? डायलॉग्स जो है वो हमारे दिलो दिमाग में घुस गए। और ऑनेस्टली बॉलीवुड को इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आजकल हम देखो फिल्म्स देखते तो बहुत हैं, लेकिन याद हमें बहुत कम रहती हैं। क्योंकि एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता था, रोजमर्रा की भाषा हुआ करती थी। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तुमसे ना हो पाएगा। ये लाइन्स स्क्रिप्ट्स का पार्ट नहीं थी, ये इंडिया का पॉप कल्चर सॉफ्टवेयर थी। लेकिन आज हजार करोड़ की फिल्में आ रही हैं, लेकिन थिएटर से बाहर निकलते ही आधे से ज्यादा डायलॉग्स मेमोरी से लॉग आउट कर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि या तो फिल्म्स रियलिज्म में इतनी धीमी हो गई हैं कि कोई लाइन हवा नहीं पकड़ती, या फिर हर दूसरा डायलॉग एक मास मोमेंट बनने की इतनी कोशिश करता है कि असली स्वैग गायब हो जाता है। आइकॉनिक डायलॉग्स लिखे नहीं जाते यार, वो फील होते हैं। और धुरंधर ने हमें याद दिलाया कि बॉलीवुड जब डायलॉगबाजी सही करता है ना, तो ऑडियंस सिर्फ तालियां नहीं बजाती, वो डायलॉग्स घर ले जाती है। इस हफ्ते का कारण नंबर 4 इज ऑल्सो अ धुरंधर।
1: नंबर 4।

लेकिन अब एक स्पेशल गाना, एक ऐसी फिल्म से जिसके डायलॉग्स लिटरली इंडियन पॉप कल्चर की परमानेंट प्रॉपर्टी बन चुके हैं। फ्रॉम जब वी मेट, कोई डाउट मत रखना दिल में, सिखनी है ये बडिंडा की।

रूही दसदा ने सिर्फ चार्ट्स क्लाइम नहीं किए, ऑनेस्टली उसने अक्षय कुमार के बॉक्स ऑफिस कॉन्फिडेंस को CPR दे दिया है। लेकिन इस वक्त बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर कॉन्वर्सेशंस थिएटर्स में नहीं, टेलीग्राम ग्रुप्स में चल रहा है। धुरंधर 2 द रिवेंज द सेकंड पार्ट, बेसिकली इंडिया में इसके OTT रिलीज का वेट इतना इंटेंस था ना कि लोग लिटरली काउंट डाउन कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म पहले एक प्लेटफॉर्म पे आनी थी और फिर 2 हफ्ते बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे आनी थी, और इन दोनों OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस भाई EMI लगने लगे थे। और फिर बीच में मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, फिल्म को इंटरनेशनली रिलीज कर दिया 14 मई को। बस गेम ओवर, क्योंकि बॉलीवुड अभी तक ये बात समझ नहीं पाया है कि इंटरनेट को ज्योग्राफी समझ नहीं आती। अगर आपकी फिल्म दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक बार किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आ गई तो 2 घंटे में वो पायरेटेड वेबसाइट्स पर भी आ जाती है, और वो भी कोई 240 पिक्सल, वो सिनेमा हॉल वाला प्रिंट वाली क्वालिटी नहीं, जिसमें बीच में किसी की परछाई नजर आती है, पिक्चर हिल रही होती है या साउंड बिल्कुल बकवास होता है। आई एम टॉकिंग ऑफ प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर 4K फाइल। अब तो सोशल मीडिया पे लोग रिव्यूज से ज्यादा लिंक्स एक्सचेंज कर रहे हैं। पहले लोग पूछते थे कि भाई स्टोरी कैसी है, अब लोग पूछ रहे हैं भाई लिंक है क्या तेरे पास। और ये बहुत ही डेंजरस साइन है, क्योंकि एक वक्त था जब पायरेसी कन्वीनियंस की वजह से होती थी, आज पायरेसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रही है। ऑडियंस फिल्म देखना तो चाहती है, इनफैक्ट इमीडिएटली देखना चाहती है, लेकिन अफोर्डेबल तरीके से देखना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि अब फिल्म देखने के लिए एक आदमी को 3 apps, 4 passwords, 5 subscriptions और 15-20 एड से गुजरना पड़ता है, और इसीलिए पायरेसी फिर से एक डरावना कमबैक कर रही है। और आयरनी देखो ना, जिस फिल्म को लोग इलीगली हंट कर रहे हैं उसी फिल्म का गाना 14 हफ्तों से इंडिया का नंबर 1 गाना बना हुआ है, फ्रॉम धुरंधर शरारत। और ये शरारत सच में महंगी पड़ गई। नंबर 1।

0: The Mania is still on, but Shararat बाकी गानों से ज्यादा पॉपुलर निकलेगा ये कभी नहीं सोचा था। एक और टाइटल ट्रैक है इश्क चला कर है, गहरा हुआ आरी आरी, इनको सुन के लगा था कि ये शायद आगे निकल जाएंगे, बट नो शरारत इट इज। बढ़े या मेरी थोड़ी ना चलती है, इट इज यू एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम मिर्ची टॉप 20 के एक नए एपिसोड के साथ। अंटिल देन सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

सिंगर मुकेश जी की आवाज में कितनी इनोसेंस है ना, मुझे कई बार उनकी आवाज ऐसे बेबी वॉइस लगती है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो मुकेश जी 10 भाई बहनों में छठे नंबर पर थे और उनकी बड़ी सिस्टर उसको म्यूजिक सिखाने के लिए एक टीचर आते थे और ये छोटे से साथ वाले कमरे में चुप चुप के ये म्यूजिक सेशंस जो है, म्यूजिक क्लासेस जो है, वो देखा सुना करते थे। और तब ये म्यूजिक टीचर ने इनको नोटिस किया और इनको भी अपना शागिर्द बना लिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना,
3: बना।
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा,
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो मिस्टर गौतम,
5: कौन बोल रहे हैं?
4: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
5: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक कहीं घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
5: हाँ, सर कुछ गाके सुनाएगी?
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
5: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
4: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
5: कौन से गाने
4: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश करूँ, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
5: सर
4: बोलिए,
5: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात
4: जी सर?
5: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
6: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: Lead ke saath only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, hot.
2: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा
2: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स हॉट
4: पुरानी जीन्स विद चारू

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

अमर अकबर एंथनी का ये गाना ऋषि कपूर साहब पे पिक्चराइज्ड है, राइट? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, लेकिन इसकी एक लाइन अमिताभ बच्चन साहब पे भी पिक्चराइज्ड है। सो इन द मूवी ऋषि कपूर ये शो परफॉर्म कर रहे होते हैं और अमिताभ बच्चन उनका ये शो देखने आते हैं और एक लाइन अकबर मेरा नाम नहीं है, अमिताभ बच्चन पिक्चराइज्ड है। तो इस लाइन को गाने के लिए ना किशोर कुमार को अप्रोच किया गया था, लेकिन वो एक लाइन गाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी प्राइस कोट की। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिर सोचा कि वो एक लाइन अब रफी साहब ही गा रहे हैं तो उन्हीं की गाई भी पिक्चराइज कर लेते हैं, तो ये सीन हुआ था। फिलहाल सीन ऐसा है कि मुस्कान को ले जाएं आप कान तक और कान रखें मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, साथ ही रखना छोड़ना नहीं, ठीक है।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

क से कैसे हैं आप, अ से अच्छे हैं, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अब इसे आप सुपरस्टिशन बोल सकते हैं, लकी चार्म बोल सकते हैं। प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश अपनी फिल्मों के नाम अ से रखते थे। फिल्म्स लाइक आपकी कसम, आक्रमण, आशिक हूँ बहारों का, आखिर क्यों, अपनापन, आशा, अर्पण, आदमी खिलौना है, आन मिलो सजना, ये जे ओम प्रकाश साहब राकेश रोशन साहब के ससुर जी थे, ऋतिक रोशन के नाना। और इन्होंने ना एक ही फिल्म बनाई जिसका नाम अ से नहीं शुरू होता था। वो फिल्म भी चल गई थी, ऐसा नहीं कि फ्लॉप हो गई। ये फिल्म थी राजा रानी और इसका ये गाना मुझे आए हाय इतना पसंद है भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: जीनत अमान की कितनी सारी सुपरहिट फिल्में रही हैं, लेकिन उनकी फेवरेट पता है कौन सी रही है? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये रही है 1980 की फिल्म इंसाफ का तराजू। सुनिए इस बारे में उन्होंने एक बार क्या शेयर किया था।
1: बहुत वुमन ओरिएंटेड फिल्म था, एक रिवेंज फिल्म था, एक मोटिवेटेड फिल्म था। आई वाज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। मेरी पार्टिसिपेशन उस हद तक रही कि चोपड़ा जी ने मुझसे हम लोगों को इन्वॉल्व कर दिया था और हम लोगों ने अपना दिल से इनपुट दिया उनको और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और इनकॉर्पोरेट भी किया। कि मेरी ज़रा सेल्फिश रीज़न भी थी बिकॉज आई वाज गेटिंग अ परसेंटेज ऑफ द कलेक्शन ऑफ द फिल्म फर्स्ट टाइम एज एन एक्टर।
0: ये बात थी। वैसे उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म कुर्बानी के पीछे फिरोज खान साहब की धर्मात्मा फिल्म से जुड़ी एक छोटी सी स्टोरी है, सुनिए।
1: उसमें उन्होंने मुझे एक सेकेंडरी रोल ऑफर किया था जिसे मैंने मना कर दिया तो वो मुझसे नाराज हो गए और कुछ फोन पे कुछ उलट सुलट कह दिया जिससे मैं उनसे नाराज हो गई, तो फिर हमारी बातचीत ही नहीं हुई। फिर जब वो कुर्बानी बना रहे थे उन्होंने फोन किया और बोला अब ये सेकेंडरी रोल नहीं है जीनत अमान।
0: तो इस तरह ये कुर्बानी में आ गई और छा गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

लता मंगेशकर एंड आशा भोसले सिंगिंग टुगेदर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसा हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है। दोनों बहनों में बहुत प्यार था लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि उतनी राइवलरी और कंपटीशन भी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि जो गाने लता जी के लिए और किसी वजह से वो नहीं गा पाती थी तो वो आशा भोसले जी को मिल जाते थे, लेकिन जो गाने आशा जी को जहन में रख के कंपोज किए जाते थे, यू नो कैबरे सॉन्ग्स या थोड़े से ज्यादा सेंशुअल सॉन्ग्स, वो फिर लता जी को ऑफर नहीं किए जाते थे बिकॉज वो उस तरह के गाने नहीं गाती थी ज्यादा। बट वट एवर, वी स्टिल हैव सॉन्ग्स जहाँ पे इन दोनों मेलेडी क्वींस ने साथ में गाना गाया है, और ऐसा ही गाना है पड़ोसन फिल्म का, ये वाला जो हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
3: हेलो
4: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
3: हाँ जी बोलो।
4: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
3: हाँ जी देते।
4: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठा यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं, जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
3: कहाँ भिजवाना है
4: मैं आपको बता दो। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाते
3: हैं जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
4: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
3: किसको जी?
4: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
3: क्या गिर गया?
4: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अब ये उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
3: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
4: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको।
3: सामान
4: उठवा
3: क्या
4: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ। सेंसेक्स गिर गया यार,
3: उठवाना है
4: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
5: हेलो
3: हेलो
5: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
3: कहाँ से बोल रहे हैं?
5: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
6: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
0: Pudani Jeans with Charu, only on

म्यूजिक कंपोजर जोड़ी राम लक्ष्मण। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इन्होंने ज्यादा राजश्रीज की फिल्म्स के लिए म्यूजिक दिया है और इसमें जो राम थे उनका असली नाम सुरेंद्र था, वो भी एक म्यूजिशियन थे, और लक्ष्मण के नाम से विजय पाटिल म्यूजिक कंपोज करते थे। और आपको पता है इन्होंने मिड 70s में ही या अर्ली 70s में म्यूजिक कंपोज करना शुरू किया होगा साथ में, और 1976 में सुरेंद्र पास्ड अवे, उनकी डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद भी विजय जो है वो राम लक्ष्मण नाम से ही म्यूजिक कंपोज कर रहे थे। उन्हीं का कंपोज किया हुआ ये गाना सुनते हैं यहाँ पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

आओ सुनाए तुम्हें अंडे का फंडा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं भाई, वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो आपको कुछ शेर व शायरी सुना सकती हूँ, वो भी किसी और की लिखी हुई। रिदा फाजली मेरे पसंदीदा शायरों में से एक, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ही लिखते थे और दिल के आर पार हो जाता था इनका लिखा। ये लिखते हैं, ये कैसी कश्मकश है जिंदगी में, किसी को ढूंढते हैं हम किसी में, निकल आते हैं आंसू हंसते हंसते, ये किस गम की कसक है हर खुशी में, चमकती है अंधेरों में खामोशी, सितारे टूटते हैं रात ही में। और ये आगे की दो लाइंस मेरी फेवरेट हैं, बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी, सलीका चाहिए आवारगी में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani jeans, charu ke saath, sirf Mirchi par.

0: म्यूजिक कंपोजर उषा खन्ना जी मात्र 18 साल की थी जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1959 की दिल देके देखो, और ये फिल्म जब वो थिएटर में देखने गई थी तब का किस्सा उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था, सुनिए।
1: जब पिक्चर लगी दिल देके देखो तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने कहा जाके थिएटर में देखती हूँ लोग क्या बोल रहे हैं। पहले बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि मैंने म्यूजिक दिया। काफी लोग सोचे कि किसी आदमी ने दिया किसी और मेरा नाम दिया है, तो मुझे बड़ा शौक। में जाके देखती थी तो दो तीन लड़के मुझे पहचान गए, क्योंकि पब्लिसिटी उन्होंने बहुत अच्छी की थी। मतलब उस जमाने में म्यूजिक डायरेक्टर की फोटो छापना बड़ी बात हो जाती थी। तो दो तीन लड़के खड़े थे, वो मैं एक कोने में बैठी देख रही थी। वो एक लड़का बताया, अरे तुमने सुना क्या बकवास म्यूजिक दिया इस पिक्चर का। बोले क्यों नहीं, एक भी गाना अच्छा नहीं। दूसरा बता रहे यार हम सोचे थे पता नहीं क्या हुआ, अच्छी लड़की है जो म्यूजिक दे रही, मुझे तो नहीं लगता। सब बोलते रहे, मैं चुपचाप रही। उसके बाद मैं धीरे से उनके पास आके बोली, भैया मेरे गाने अच्छे नहीं लगे तो मैं तो कोई बात नहीं, मैं अगली पिक्चर में अच्छा म्यूजिक देने की। पर एक्सपीरियंस, फिर वो बेचारे मुझसे माफी मांग ले। बोले नहीं, हम तो आपको ऐसे ये मजे आते थे। हम लोग जाते थे थिएटर में, कहाँ बैनर्स लगे हुए हैं, इसमें मेरा नाम कितना बड़ा लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है।
0: How adorable and how awesome is this song composed by Usha Khanna ji. हाँ थोड़ा सा उदास गाना है, लेकिन उदासी में भी अलग ही खूबसूरती होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Yeah।

वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स एवर इज लावारिस का अपनी तो जैसे तैसे। पता नहीं कितने सारे रीमेक्स रीमिक्सेस बने इस गाने के। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन हम इसके वीडियो की बात करेंगे। इसमें जो डांसर है ना, अक्सर ये गलत फहमी हो जाती है कि उन फीमेल डांसर का नाम नेली है। नेली वो एक्ट्रेस थी इस फिल्म में, एक्स्ट्रा एक्ट्रेस थी, जिनकी वजह से ऐसा सुनने में आता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच में थोड़ी सी लड़ाई ब्रेकअप टाइप का हो गया था, बिकॉज अमिताभ बच्चन साहब थोड़ा ज़्यादा ध्यान उन पर दे रहे थे। लेकिन ये गलत फहमी है, मतलब ये गलत फहमी है कि इस गाने के वीडियो में जो डांसर हैं वो नेली हैं, वो नेली नहीं है। उन डांसर का नाम है अलका नूपुर, जिन्होंने काफ़ी फिल्मों में एज डांसर परफॉर्म किया है। चलिए अभी तो यहाँ पे ये गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो मिस्टर गौतम,
4: कौन बोल रहे हैं?
3: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना आप वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
4: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
4: हाँ, सर कुछ गाके सुनाई?
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर। वो देखा है ना कोंडा आपने? है ना कोंडा फिल्म देखी है?
4: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ।
3: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
4: कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं। उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ। तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
4: सुन ले बात,
3: मेरी बात
4: हाँ। सुन पहले बात सुन।
3: हाँ सर।
4: और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है। सर बोलिए।
4: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
3: जी सर।
4: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या, किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

म्यूजिक कंपोजर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के बीच में कुछ गिनी चुनी ऐसे डिसएग्रीमेंट्स लड़ाइयां हुई होंगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं, डिसएग्रीमेंट तो बहुत हुए होंगे, लेकिन ऐसे ढेंटडन टाइप की जो लड़ाई होती है वो गिनी चुनी थी। ऐसी एक उनकी कोई झड़प हुई थी जब ये कोई अब्रॉड म्यूजिक टूर पे गए थे, जहाँ पे प्यारे लाल जी जो हैं उन्होंने इम्पल्सिवली ऐसा डिसाइड कर लिया कि अब वो लक्ष्मीकांत के साथ काम नहीं करेंगे। इनफैक्ट 2 हफ्ते तक लक्ष्मीकांत जी अकेले ही उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे जो इन दोनों को मिला था। लेकिन ये लड़ाई बस फिर 2 हफ्ते की ही थी। इस बीच में इतने सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग पीपल लाइक लता मंगेशकर, मनोज कुमार, जे ओम प्रकाश और इनकी फैमिली के लोग भी, इन्होंने इनको इतना कन्विंस किया, इतना बोला कि भाई पैचअप कर लो, पैचअप कर लो, पैचअप कर लो, तो इनका पैचअप हो गया। अच्छा हुआ हो गया, नहीं तो इतना अमेजिंग म्यूजिक हमको कैसे मिलता। चलिए इन्हीं का कंपोज किया हुआ गाना सुनेंगे पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।
5: ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान।

0: मैं अभी तक ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि कयामत से कयामत तक फिल्म का नाम पहले नफरत के वारिस होने वाला था।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, इसका पहले नाम नफरत के वारिस होने वाला था। अगर इस नाम से फिल्म रिलीज होती तो क्या उतनी ही हिट होती? आई गेस सो। लेकिन तब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में से QSQT नहीं बुलाते, तब हम इसे NKW बुलाते। डजंट साउंड कूल एट ऑल, नफरत के वारिस। QSQT इज क्यूट एंड कूल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @RJ.Charu, RJ.CHARU इस नाम से। सुनते रहिए।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन।

0: रेखा एक बेहतरीन डांसर हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन जब एक बहुत पुराने और पॉपुलर इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये डांस कहाँ से सीखा है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कभी डांस सीखा ही नहीं, कभी नहीं सीखा। मेरे हमारे यहाँ हमारे फैमिली में यही है कि बचपन से सभी डांस करते हैं, माय मदर, माय सिस्टर्स। और प्रोफेशनली अगर आप देखा जाए तो हाँ, ज़बरदस्ती हम लोगों को डांसिंग स्कूल मम्मी ने भेजा था ज़रूर, बट मैंने कभी ठीक से ध्यान से सीखा नहीं। अब मुझे लगता है कि आई विश मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेती तो डांस। मुझे ये लगता है कि इट्स योर फीलिंग, अंदर से जो आप फील करते हैं उसको आप, इफ़ यू फील इट विथ योर सोल, यू नो, तो वो यू नो अंग अंग में आ जाता है। इट्स योर ग्रेस व्हाट यू हैव, एंड आई थिंक हमारे फैमिली में सभी ग्रेसफुल है।
0: वेल, ग्रेस, एलिगेंस, नजाकत, अदाएं, ये तो ऐसा लगता है कुछ ट्रिक्स हैं। और रेखा एक जादूगरनी, ये बंदी ना इश्क है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Milchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Milchi, burga.
2: हेलो,
3: हाय शिवानी.
2: हाय.
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर.
3: मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है. अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड. चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे. हाँ? अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता. मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए. वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले.
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ.
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा.
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: सिर्फ 3
2: करता हूँ.
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा.
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आपने

0: ला रही है, पैर पे कर लेना।
1: कुकड़ू
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: La bala.
0: Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello, usko wahan se mat uthao, yaar. Hello.
2: Hello.
3: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं, जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
2: कहाँ भिजवाना है?
3: तो मैं आपको बता दूँ। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
2: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको,
2: सामान
3: उठवा।
2: क्या मजाक कर रहा
3: है? तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे?
4: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कंफर्ट पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, हैप्पीनेस पर नहीं। कैसे, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सही बात है, मुझे ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, हमें खुशी चाहिए, लेकिन हमें अक्सर लगता है कि खुशी चीजों से मिलती है,
4: क्योंकि वो चीज जब हम लेते हैं तो टेम्पररी तो वो क्रिएट होती है ना। जैसे आपने नई कार ही ली तो आपको एक दिन तो उसका नशा चढ़ता ही है ना,
3: बिल्कुल,
4: कि बहुत अच्छी है, सब कहते हैं ये नई कार है, ये है ये। अब वो दो दिन चार दिन के बाद भी तो वही है और आप उसी के अंदर बैठे हैं, और उसी के अंदर बैठ करके आप रो रहे हैं, तो वो देख क्यों नहीं रही आपको खुशी। तो जब दुखी होना चाहिए उसमें जाकर के बैठ जाना चाहिए, पर वो डिजाइन ही नहीं करी थी खुशी देने के लिए,
3: वो डिजाइन
4: वो कंफर्ट देने के लिए डिजाइन की थी, वो आपको ट्रैवल में कंफर्ट देने के लिए करी थी।
3: बहुत बढ़िया बात है, तो खुशी अलग है और कंफर्ट अलग है। 1 BHK से 2 BHK आप कंफर्ट के लिए जाते हैं, साइकिल से स्कूटर से गाड़ी आप कंफर्ट के लिए जाते हैं, उसमें खुशी मत खोजो।
4: 1 BHK से 2 BHK की जर्नी भी खुशी से करो,
3: इसको भी इंजॉय करो,
4: उसको भी इंजॉय करो,
3: और 2 BHK से भगवान न करे 1 BHK में आना पड़े उसको भी इंजॉय करो।
4: तो आपको डिसकंफर्ट होगा, नेचुरल सा होगा, जैसे कोविड का पीरियड था, वी हैड टू कम डाउन, अपने लाइफस्टाइल को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ा, बिकॉज सो मेनी ऑफ अस वर नॉट अर्निंग, हमारे जो मंथली इनकम थी सबकी थोड़ी स्टॉप हो गई थी, तो सबको थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ा। कई बच्चों को अपने प्राइवेट स्कूल से निकाल कर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालना पड़ा, कईयों को अपने ट्रैवल प्लान्स कैंसिल करने पड़े, हर साल ट्रिप लगाते थे नहीं लगा पाए, हर साल कुछ चीजें खरीदते थे नहीं खरीद पाए, फर्क पड़ा, बाहर के लाइफस्टाइल में फर्क पड़ा, अंदर नहीं पड़ना चाहिए था, अंदर नहीं पढ़ना चाहिए था। इनफैक्ट सबको बैठना चाहिए था और आपस में बात करनी चाहिए थी कि ये डिफिकल्ट पीरियड है तो हम कहाँ कहाँ पर अपने खर्चे कम कर सकते हैं, खर्चे कम कर रहे थे हम, खुशी क्यों कम में बात करनी चाहिए थी कि ये डिफिकल्ट पीरियड है तो हम कहाँ कहाँ पर अपने खर्चे कम कर सकते हैं, खर्चे कम कर रहे थे हम, खुशी क्यों कम कर रहे थे, पर हमने खर्चे नहीं

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Setbacks से डरना नहीं, डट कर मुकाबला करना है. आइए इसे और गहराई से समझें.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: डे बिफोर यस्टरडे एक प्रोग्राम के लिए वापी में थी एंड हम एक ग्रुप के साथ बैठे थे. बाद में प्रोग्राम पूरा हो गया और वो बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी. वो थी जिसने भुज में जब अर्थक्वेक आया था, सो शी वॉज वन ऑफ देम.
4: अच्छा.
3: She said, तब उसकी जो एज थी वो 7-8 years की थी, तो वो सुना रही थी कि उनका कैसे 2 फ्लोर का घर था, अचानक अर्थक्वेक आया. कहते उसके बाद बस अगले मिनट सब कुछ खत्म, घर हमारा टूट गया. उसमें से एक फैमिली मेंबर ने शरीर छोड़ दिया. फादर को वो सब देख करके अचानक हार्ट अटैक आया एंड ही हैड टू बी एडमिटेड इन एन हॉस्पिटल. कहते हम एक मिनट के अंदर सड़क पर आ गए. हमने तो लिटरली जैसे विनाश देखा. 2 दिन तक कुछ खाने के लिए नहीं, ठंड भी थी उन दिनों में. कहा वो एक्सपीरियंस इतना अलग था कि जहाँ प्यार से आपको पेरेंट्स खिलाते हैं और फिर आपको वो जो ट्रक आता है और ऐसे मांग करके, मना इतनी भीड़ हो जाती है उस समय खाने के लिए लेना. और फिर कहते उस समय जो बुजुर्ग थे वो कई बार चिल्लाते थे कि भाई हमें नहीं दे रहे, बच्चों के ऊपर तो रहम करके देंगे ना, आप बार बार जाकर लेकर के आओ. तो अपने लिए भी लेना
4: और हमारे लिए भी लेना
3: और उनके लिए भी लेना. शी वाज शेयरिंग मेनी स्टोरीज कि वो पीरियड कैसा था. एंड आई फेल्ट कितनी देर लगे ना, हम डर रहे हैं ना हम किसी चीज का आह्वान कर रहे हैं, पर हमें ये तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि चेंज होने में तो टाइम नहीं लगता ना. लेकिन अगर वो अपने को संभालते नहीं तो कभी भी इस सीन से बाहर आ पाते.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हर मोड़ पर शिकायत नहीं, कभी सीख भी होती है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैंने जब कहा ना कि वैसे मिनटों में जिंदगी पूरा उलट पुलट हो जाती है, तो ऐसे में कभी कभी लगता है कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। इसमें तो ना मैं किसी और को दोष दे सकता हूँ, मतलब ये तो इंसान ने किया ही नहीं, ये तो फोर्स ऑफ नेचर है। तो भगवान को ये दोष दें, भाई भगवान क्या हो गया, भाई मैंने क्या किया, इतने लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो तुम।
4: गॉडली कलामिटी नहीं है, नेचुरल कलामिटी है। भगवान को ब्लेम तो हम कर देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जब बात आती है तो किसी एक पर तो ब्लेम रख भी नहीं पाते ना, एक को तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। लेकिन गॉडली कलामिटी नहीं होती है, नेचुरल कलामिटीज है। और नेचुरल कलामिटीज क्यों आती है, क्योंकि नेचर को बहुत सटली हम लोग एक्सप्लॉइट करते जाते हैं। नेचर हमारे लिए है, नेचर देखो क्या करता है, देता जाता है, चाहे वो सूर्य है, पानी है, एवरीथिंग। बट आप देखें, हमने अपने डिजायर के कारण, अपनी ग्रीड के कारण नेचर को कितना एक्सप्लॉइट किया। आज ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है, आज इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कारण क्या है। देखो अगर आप इसमें भी थोड़ा सा डीपली जाएंगे ना, ओवर कंजम्पशन हो रहा है। जो कहाँ से आ रहा है, जो हम चीजें ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, नेचर से ही तो आ रही है ना। ओवर कंजम्पशन क्यों है, क्योंकि बहुत डिजायर्स हैं। जो गांधी जी ने कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड पर नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो बहुत इच्छाएं हैं, बहुत ग्रीड है। क्यों ग्रीड है, अंदर में खालीपन है। आखिर फिर रूट वही आ जाता है, आप अंदर खाली हैं, तो आप उस खालीपन को भरने के लिए क्या करते हैं, आपकी इच्छाएं होती हैं, चीजों के प्रति हैं या कुछ भी हैं। अब वो चीजें कहाँ से आएंगे, चीजें जो हम क्या करते हैं, सबकी परचेजिंग पावर बढ़े, इकोनॉमी बूस्ट हो, लेकिन वो सब के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चीजें कंज्यूम करनी पड़ेंगी ना। चीजें कंज्यूम करने के लिए बनानी पड़ेंगी, तो वो बनती कहाँ से है। पहले तो आपको वो सब रॉ मटेरियल तो अर्थ से ही लेना पड़ेगा, फिर उसको क्रिएट करने के लिए जो आपकी इंडस्ट्रीज आदि है उसमें भी जो फॉसिल फ्यूल आदि यूज होगा यहीं से होगा, फिर वो जो ट्रांसपोर्टेशन है, देयर इज सो मच एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, फिर ग्रेजुअली वो किसी ना किसी रूप में सामने आता है। तो नेचर को अगर हम हार्मनी में रहें, इसलिए फिर अब देखो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो हमें 5 R सिखाते हैं, रिसाइकल करो, रिड्यूस करो, आपका जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करो, रीथिंक करो। आप अफोर्ड कर सकते हो, क्या प्रकृति अफोर्ड कर सकती है। आप प्राइस टैग देखते हैं, आप कहते हैं आई कैन अफोर्ड दिस, क्या प्रकृति उसको अफोर्ड कर सकती है। रीथिंक करो, जो नहीं चाहिए उसको रिफ्यूज करो। पर हम सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है, ऑल ऑफ अस इंडिविजुअल कार्मिक अकाउंट विद नेचर, ये भी बहुत सटल होता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, कई बार देखे ना अभी भी वाइल्ड फायर्स होते हैं, तो इतने सारे घर कई बार एक साथ रो में जल जाते हैं, फिर एक बच जाता है। लोग यही सोचते रहते हैं, ये एक कैसे बच सकता है। या जब कई बार फ्लड आता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई एक स्पिरिचुअल प्लेस होगी वो बच जाती है। कभी कभी तो इफेक्ट भी होती है, पर कभी कभी बच जाती है। दोनों एनर्जी है, प्रकृति भी एक एनर्जी है, उस स्थान की भी एक एनर्जी है। जिसकी एनर्जी ज्यादा पावरफुल होगी, दूसरी एनर्जी को झुकना पड़ता है। जैसे हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उसमें दिखाते हैं उसको सिंबॉलिकली, कि वो कृष्ण को लेकर के जा रहे थे तो बहुत तूफान था, प्रकृति का ही तो तूफान था ना, लेकिन कृष्ण प्योर था तो उसके अंगूठा भी टच हुआ तो वो तूफान रुक गया। इट्स जस्ट अ रिमाइंडर दैट कि जो प्योरिटी की पावर है वो इतनी ज्यादा है कि फिर वो नेगेटिव एनर्जी को भी शांत कर देती है। एंड दिस इज व्हाट यू सी इन वर्ल्ड आल्सो, कई बार वो जो ज्यादा पावरफुल प्योर स्थान है वो बच जाता है, वो रह जाता है। बट अगेन वी कैन नॉट ब्लेम इट ऑन गॉड, इट्स नॉट गॉडली कलामिटी, इट्स अ नेचुरल कलामिटी।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 5G Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जो कर रहे हो उस पर फेथ होना जरूरी है, क्यों? चलिए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने पिछले 3 साल में 6 नौकरियां चेंज करी हैं और वो बहुत सीधे साफ सरल मन के हैं, और वो कह रहे हैं कि ज्यादातर जगह में कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बहुत होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है, मुझसे होता नहीं है। लेकिन वो बहुत सीनियर पोजीशन पर पहुंच चुके हैं और वो कह रहे हैं कि कई जगह तो मुझे सामने से बोला गया है कि भाई तुम ये नहीं कर पाओगे तो तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमको निकाल के फेंक देंगे हम, या तुमको इतना इनइफेक्टिव कर देंगे तुम अपने काम को एंजॉय नहीं करोगे, तुम खुद ही छोड़ दोगे। तो वो कहते हैं कि मेरे पास चॉइस है कि मैं उनका हिस्सा बनूं उस बड़े ग्रुप का जो ये पॉलिटिक्स करती है अपने आप में ही, पता नहीं उनको क्या मिलता है इससे, या मैं इससे दूर रहूं। अभी तक मैं दूर रहा, मेरे करियर में कोई प्रोग्रेशन नहीं हुआ, मैं 3 साल 4 साल 7 8 साल से इनफैक्ट मैं स्टैग्नेंट ही हूं, या फिर मैं बोलूं यार मेरा घर परिवार है, मुझे उसको चलाना है। तो जब सामने वाले आपको कह रहे हैं कि भैया देखिए अगर आप इसका हिस्सा नहीं होंगे तो आपको को महत्व नहीं दिया जाएगा, आप ऐसे माहौल में कैसे आगे बढ़ेंगे?
4: अगर आप काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद आप पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं कि नहीं बनते उससे फर्क नहीं पड़ता है।
3: अच्छा,
4: एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू परफॉर्म ग्रेजुअली, तो फिर वो बोलता है ना, आपने जो किया है वो रिजल्ट तो बोलता है, सफलता तो बोलती है। फिर आपको कोई समझो देयर वाज समबडी हु वाज शेयरिंग विद मी कि शी इज गुड एट हर वर्क, बट इनिशियली सब जैसे काम पूरा हुआ फिर 5 बजे हैं, सब मिलते हैं, फिर कारोबार जिसको बोलते हैं, फिर कुछ ड्रिंक करना, मिलना, ये वो, तो मैं उसका हिस्सा कभी नहीं बने। तो जब हिस्सा नहीं बने तो इनिशियली एक्सेप्टेंस भी नहीं, थोड़ा सा रिजेक्शन, थोड़ा सा सपोर्ट भी नहीं, थोड़ा सा फेवर भी नहीं, प्रिविलेज भी नहीं, पर शी वॉज गुड एट हर वर्क, परफॉर्म किया, आउटपुट दिया, शी इज एट अ सीनियर पोजिशन टूडे। एज लॉन्ग एज आप परफॉर्म करते हैं, आप आउटपुट दिखाते हैं, कौन सी कंपनी होगी जो आपको निकालेंगे मुझे बताएं, क्यों निकालेंगे वो? लेकिन अगर आउटपुट भी नहीं है देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। आई रियली डोंट फील कि अगर आउटपुट है तो आपको कोई पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने की जरूरत है। ये जरूर हो सकता है कि अगर आप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनते तो लोग आपके बारे में कुछ बातें करते हैं, कुछ बोलते हैं, थोड़ा बहुत रिजेक्ट करते हैं, टॉन्ट कर देते हैं, दैट इज ओके, इट इज ओके। आपको फेथ होना चाहिए आप जो कर रहे हैं।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पॉजिटिव चेंज शुरू होता है आप से, ना कि दूसरों से। कैसे जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: वो जो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं, मैं बहुत वीक हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ इस सिस्टम में, ये क्यों कर रहे हैं लोग, जो बहुत इसको सह नहीं पाते, उनको कैसे गाइड मेंटोर करेंगे आप?
4: सिस्टम को चेंज वही कर सकता है जो पहले खुद में चेंज लेकर आए। खुद बदलेंगे तो जग बदलेगा, खुद बदलेंगे तो जग बदलेगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है।
3: स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन।
4: इफ यू रियली वांट टू सी एनी पॉजिटिव चेंज,
3: ब्रिंग इट इन योरसेल्फ।
4: इट बिगिंस विद यू,
3: बिगिंस विद,
4: वेदर इट्स अ वेरी स्मॉल चेंज। वो गांधी जी की कहानी सुनाते थे ना, आपने भी सुनी होगी। एक माता अपने बच्चे को लेकर आई गाँव से, 20 किलोमीटर चलकर आई। उसने गांधी जी को कहा, आप इसको बोलो ये ना मीठा बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है, आप इसको बोलो नहीं खाए। तो उसने कहा, अच्छा आप एक हफ्ते के बाद लेकर के आना। फिर वो 20 किलोमीटर वापस गई। फिर वो एक हफ्ते के बाद 20 किलोमीटर के बाद अपने बच्चे को लेकर आई। फिर उन्होंने महात्मा जी ने कहा, गांधी जी ने, बेटा ये अच्छी चीज नहीं होती, आप ये नहीं खाओ। तो वो बहुत अपसेट हो गई मदर कि आपको यही बात कहनी थी तो पिछले हफ्ते कह देते। मैं 20 किलोमीटर वापस गई फिर आई, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि पिछले हफ्ते तक मैं भी खाता था। इस एक हफ्ते में पहले मैंने छोड़ा। So when I left it, only then can I tell the child na, not to do it. Practice what you preach. मतलब अगर वो चीज आपके अंदर नहीं है तो वो चेंज आप सिस्टम में या कहीं पर भी बाहर नहीं ला सकते।
3: Yeah, बहुत बढ़िया बात है। वाह वाह।
4: So you begin with yourself and gradually just be an example. This is what I feel. Talk the walk.
3: बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।
4: नो सॉरी, वॉक द टॉक। माना आप सिर्फ बातें नहीं करो, जो भी आप बोल रहे हैं वो आप करना शुरू करें। देयर विल बी सर्टेन सेगमेंट ऑफ पीपल हु विल गेट इंस्पायर्ड एंड स्टार्ट फॉलोइंग यू।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
1: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
0: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
2: नो
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स। कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
4: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मास्टरी पेशेंस और प्रैक्टिस से तैयार होती है, मैजिक से नहीं। कैसे, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर श्रेया, कई बार ऐसा होता है कि काबिलियत है लेकिन जरूरी नहीं कि मैं किसी चीज में माहिर हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 15-20 साल पहले मुझे एक मेरे जो बॉस थे एक अप्रेजल में उन्होंने मुझे कहा कि विशाल तुम बहुत सारे चीजों में बहुत अच्छे हो, तुम हर में 7/10, 8/10 हो, तो बहुत सारी क्षमताएं हैं तुम में जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी में तुम 11/10 नहीं हो और ये तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। और मुझे बहुत बुरी लगी वो बात उस समय, लेकिन मैंने कहा ठीक है चलो इस पे काम करते हैं। कट टू टुडे, जब मुझे लगता है कि आज का जमाना ऐसा है कि शायद आपको बहुत सारी क्षमताओं में अच्छा होना जरूरी है। शायद इट्स गुड दैट आई एम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, अच्छी है बुरी बात ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उस समय मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे प्रमोशन भी नहीं दिया गया, लेकिन आई वेंट बैक सेइंग कोई बात नहीं इस पे काम करेंगे। तो जब आप कह रही हैं कि इफ यू आर गुड एट योर वर्क, समटाइम्स आप बहुत अच्छे नहीं होते अपने काम पे, आप भी सीख रहे होते हैं, आप एक काम पे आए हैं आपको बहुत कुछ सीखना होता है, तो जरूरी नहीं कि आप एक्सपर्ट हैं, आप माहिर हैं, आप एस कर रहे हैं किसी चीज को। उस सिचुएशन में हाउ डू डील विद इट?
4: आपको अपने पर फेथ होना चाहिए कि ये भी एक जर्नी है और उसमें भी सब कोई मास्टरी लेकर के नहीं आते हैं। हम धीरे धीरे किसी चीज के ऊपर मास्टरी अक्वायर करते हैं, किसी भी स्किल के ऊपर। आज एक खाना बनाना भी है, एक रोटी बनाना भी है, एनीथिंग, यू बिगिन समवेयर। और उसके बाद भी हर एक जो मास्टरी अचीव करता है वो डिफरेंट होती है। कई जैसे होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मतलब नेचुरली होते हैं, और कईयों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस चीज को अचीव करने के लिए। एंड इट इज ओके, इट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। नाउ पहली चीज है जो आपने कहा कि आपको बहुत बुरा लगा जब उन्होंने ऐसे कहा। सो वन थिंग आई ऑलवेज फील इज कि हम जरूर फीडबैक दें, पर हमारा फीडबैक हमेशा ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को थोड़ा एम्पावर करे। जैसे अगर हम इसी चीज को ऐसे कहते कि आप बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छे हैं, ये तो किसी किसी में ही होता है, मतलब टू बी गुड एट सो मेनी थिंग्स, लाइक दिस इज ऑल्सो अ रेयर क्वालिटी ना। कई बार क्या होता है हम किसी एक चीज में माहिर हैं।

0: लेकिन अगर आप बहुत सारा स्किल सेट आपके ऊपर है तो ये भी तो एक विशेषता है, तो आप ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई एक चीज के अंदर आप अगर मास्टरी अक्वायर करते हैं तो दैट विल हेल्प यू ग्रो फास्टर। मोस्ट केसेस में हमारी एडवाइस बहुत अच्छी होती है, हमारा तरीका ठीक नहीं होता। मोस्ट केसेस,
1: बिल्कुल सही कह रही हैं।
0: पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनकी एडवाइस बहुत अच्छी होती है, अगर वो तरीका ठीक नहीं होता ना तो सामने वाला उस एडवाइस को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसको पहले तो नेगेटिव एनर्जी आती है ना, तो वो हर्ट हो जाता है, तो हर्ट होते है उसका मन जो है उस एडवाइस को रिजेक्ट करता है कि आप कौन होते हैं कहने वाले, आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले। समझो कोई गिफ्ट मैं आपको देती हूँ, अभी वो डायमंड का है, तो वो डायमंड की अंगूठी है उस बॉक्स में है, रैप्ड अप है, बहुत सुंदर पेपर बैग है, लेकिन मैं इसे फेंक कर आपको देती हूँ। तरीका मेरा ठीक नहीं था, गिफ्ट तो बहुत सुंदर है पर तरीका मेरा ठीक नहीं था, तो आप उठा के साइड में रख देंगे, आप कहेंगे मुझे नहीं चाहिए। और वहीं पर कई बार वो कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, हाथ से वो ड्राइंग बना देते हैं, वो उनको बनाना भी नहीं आता होता, बर्थडे है कोई घर में अपना ही बच्चा होगा, कई बार स्टूडेंट टीचर के लिए लेकर के आते हैं वो कार्ड, बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। कभी कभी हम 10-10, 20-20 साल तक भी उस चीज को संभाल के रखते हैं।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Oh no!
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।

0: इट्स हॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: जो तुरंत मिलता है हमेशा सही नहीं होता, कैसे जानते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: ज्यादातर इंसान जो होते हैं मेरे जैसे, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इंसान एक दो दिन ट्राई कर भी ले, उसको जब इमीडिएट नतीजा नहीं दिखता है तो अक्सर द रीजन व्हाई आदमी इसको बहुत समय तक नहीं कंटिन्यू कर पाता है क्योंकि चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं, उसका इफेक्ट नजर नहीं आता और वो वापस अपने रोजमर्रा की दिनचर्या पे चला जाता है। जैसे मैं डाइट करता हूं तो मुझे लगता है मैंने अगले दिन अपना वेट देखा, अरे 200 ग्राम कम हो गए, तो एक मोटिवेशन मिलता है, अरे 200 ग्राम कम हुए, चलो इसको कोशिश इसको जारी रखते हैं। फिर कभी 300 ग्राम बढ़ भी जाता है लेकिन लगता नहीं नहीं। तो ये स्टेप बाय स्टेप कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं जिससे चेंज हो।
5: अभी बहुत सुंदर बात कही कि वी स्टार्ट मेकिंग एफर्ट फिजिकल के लिए, फिर 200 ग्राम चेंज हो, थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है, पर 200 ग्राम भी दिखाई देता है ना, 2 किलो तो नहीं दिखाई देता।
4: बिल्कुल नहीं,
5: यहाँ हमें 2 किलो देखना होता है डायरेक्टली, दैट्स वेयर वी लूज होप। ऐसा नहीं है, इनफैक्ट दिस इज इजियर। अगर आपने थोड़ा सा भी एफर्ट किया तो आपको चेंज दिखाई देगा, बट वो चेंज का मतलब ये नहीं है कि अच्छा अब तो कभी गुस्सा आएगा ही नहीं, या कभी मुझे जेलसी फील ही नहीं होगी, या मैंने आज से करना शुरू किया तो कल मैं एंजल बन जाऊंगा। इट्स नॉट, देयर इजंट एनी मैजिक। दिस इज ऑल्सो स्टेप बाय स्टेप, जस्ट लाइक यू यूज, आप 1 किलो एट अ टाइम लूज करते हैं, आप 1 पेज एट अ टाइम लिखते हैं। व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग टू वॉक इट्स 1 स्टेप एट अ टाइम। इधर भी ऐसा ही है, आप में से कोई ऐसा है जिसको बहुत इरिटेशन और गुस्सा होता है, नाउ यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, तो ऐसा हो सकता है आज आप दिन में 10 बार करते थे तो शायद 9 बार करेंगे, 1 बार नहीं करेंगे, बट दैट इज ऑल्सो विक्ट्री ना। जैसे आप सिगरेट स्मोक करते हैं, नाउ यू स्मोक 10 सिगरेट्स अ डे, सो सडनली यू कांट क्विट। देर आर सम पीपल हु डू इट ऑल्सो, अगर स्ट्रॉन्ग विल पावर है, नहीं तो फ्रॉम 10 यू गो टू 9, यू गो टू 8, यू गो टू 7, यू गो टू 5, एंड ग्रेजुअली वो बंद हो जाता है। सो सिमिलरली बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन व्हाट वी एस्केप इज द एफर्ट। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बिना एफर्ट के मिलता है,
4: जैसे
5: बिंज वॉचिंग।
4: बिल्कुल सही,
5: बिंज ईटिंग। आपको कई बार पता भी चल रहा होता है कि जो आप खा रहे हैं वो अनहेल्दी है, मेरा मन कह भी रहा है कि ये नहीं खाना चाहिए
4: जी,
5: मुझे पता है, विवेक
4: होता है। मेरे साथ रोज रात को होता है।
5: सो दैट मीन्स यू नो ना, आपका विवेक, आपकी इंटेलेक्ट कह रही है, वो जजमेंट आप कर रहे हैं कि ये नहीं खाना है
4: जी,
5: लेकिन क्योंकि मन थोड़ा सा कमजोर है कहता बस एक बार। अब जब आप एक बार खाते हैं तो ऐसा नहीं है आपको कुछ उससे मिलता नहीं है, आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है
4: जी।
5: और जब वो इंस्टेंट मिलता है, दैट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यू नो यू फील दैट, अ ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है व्हिच इज द प्लेजर हार्मोन। वो जैसे हार्मोन रिलीज होता है यू फील गुड, व्हिच इज वेरी टेम्पररी। जो उसका नेगेटिव इफेक्ट है, अगर आपको किसी चीज से प्लेजर मिलता है आपको दोबारा दिल होगी वो करने की,
4: बिल्कुल,
5: तो वो धीरे धीरे आप उस पर डिपेंडेंट होते जाएंगे, फिर वो आपका एडिक्शन बनता जाएगा टू एन एक्सटेंट कि जो ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज है आप उसको प्रोकास्टिनेट करते जाएंगे।
4: हाँ, बिल्कुल, ये बाद में करते हैं,
5: वहां से प्रोकास्टिनेशन शुरू होता है। अभी उसके अंदर क्या है, आपको अपने मन में कुछ नहीं सोचना कॉन्शियसली, पिरोस कर मिल रहा है सब,
4: सामने से आ रहा है सब कुछ,
5: सब कुछ। सो वो आप हंसाना चाहें तो आप हंसेंगे, वो रुलाना चाहे तो आप रोएंगे, सो यू फॉरगेट योर लाइफ और आप थोड़ी देर के लिए किसी दूसरी कहानी में टोटली अब्सॉर्ब हो जाते हैं।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
2: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सिर्फ मंजिल नहीं, जर्नी का मजा लेना भी जरूरी है। कैसे, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो अमिताभ भट्टाचार्य ने बहुत खूबसूरती से लिखा था एक गाने में कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, और उसको एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है हमें, कि अगर हम सफर को एंजॉय करेंगे तो मंजिल शायद और खूबसूरत नजर आएगी।
4: नेचुरली ये एक पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए, हम भूल जाते हैं। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ हमेशा होता है एंड गोल, वहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँच कर खुशी मिलेगी। सफर को हम भूल जाते हैं। जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सफर, जर्नी। जर्नी को एंजॉय करना बहुत जरूरी है, और जर्नी हमेशा स्मूथ नहीं होते हैं। जब हम जर्नी की बात करें, लाइफ की भी जो जर्नी है, थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कुछ ना कुछ कोई चैलेंज है, कोई सिचुएशन है। अब आपको ये रिफ्लेक्ट करना है अपने से कि उस अप्स एंड डाउन में भी हम स्टेबल रहते हैं। इट इज ओनली वन आई अचीव, इट इज ओनली वन आई अक्वायर, इट इज ओनली वन आई एम अप्रूव्ड, उस मोमेंट में ही हमें अच्छा लगता है दैट आई एम स्टेबल एंड आई एम हैप्पी ऑल द टाइम। नाउ दैट इज स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज क्वालिटी ऑफ माई लाइफ।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: अटेंशन प्लीज, अगर तुमने सुबह का अलार्म 5 बार स्नूज कर दिया है ऑलरेडी, दैट मीन्स यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप विद योर स्लीप साइकिल. गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूं तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स, और ये अभी अभी शुरू हुआ है. एंड देसी लाइफ इन अमेरिका इज ट्रूली नेक्स्ट लेवल. पेरेंट्स इंडिया से सोच रहे होते हैं यू आर लिविंग द फॉरेन ड्रीम, मीनवाइल यू आर स्टैंडिंग इन कॉस्को एट 8 AM वंडरिंग व्हाई ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन योर चाइल्डहुड एम्बिशंस. बट चलो यार, whether you're driving to work right now, या फिर pretend कर रहे हो work from home करने का, या फिर secretly you're eating leftover biryani for breakfast, this is the show where you get a little slice of life, little slice of home with extra tadka. Tadka लगता है Bollywood की gossips का, feel good vibes का, around the world की खबरों का, और साथ साथ में थोड़ी सी यहाँ वहाँ की बातें. And of course, I've got a killer playlist for you, my people. एकदम मिर्चीदार झिंटक गाने मैं तुम्हारे लिए प्ले करने वाली हूँ फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स. मेरा नाम है प्रिसिला. ऑल्सो ह्यूज वार्म हग टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग ईद. ईद मुबारक फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट मिर्ची मॉर्निंग्स, ओनली योर फेवरेट ब्रेकफास्ट शो. फटाफट से जाकर मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप भी चाहिए 9033 मिर्ची, दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर 9033647244. सब नोट कर लिया है तो अब आने वाले हैं मिर्चीदार बैंगर्स. Only for you. Sit back, relax, and good morning, Mary Jan.

0: Profit Milchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana.
2: Rabbana.
1: Burga, burga. La virtua la burga.
2: Milchi, burga.
3: Hello,
4: Mr. Gotham. Sir, I actually asked sir, I was requesting to talk. I was asked to that for singing, winging, singing. Sir, so sir, singing is a little song. I am singing. I am singing. I am singing. I am different. I am singing.
3: कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको
4: सुनाएंगे नहीं। पहले मोहल्ले में तो स्नेक का ही घुस गया था तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भैया आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है सर नगीना फिल्म देखी आपने नगीना फिल्म देखी है सर आपने
3: सर कुछ गा के सुनाएगा।
4: हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने ना कोंडा फिल्म देखी है।
3: एक काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ सुबह।
4: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
3: कोंडा में कौन से गाने
4: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज वो उसके अच्छे लगते हैं उसने काम किया ना कोंडा में यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ ताने डोले मेरा माने डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बताए बांसुरिया सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे काट खाएगा
3: सुन ले बात मेरी सुन पहले बात
4: हाँ सर
3: और इसे बंद करिए बीन बीन जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
4: है सर बोलिए
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते समझ गया ना तू बात है
4: जी सर।
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या किसने नंबर दिया था तुझे
5: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता आप रेडियो मिर्ची पे हैं दिल्ली आपको सुन रही है छोटा सा मजाक किया है मुर्गा बन गया आपका।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का वो सेगमेंट जहाँ पर हम हिस्ट्री की क्लास लगाते हैं। सो लेट्स टाइम ट्रैवल टुगेदर। सबसे पहले चलते हैं 1930 में, डिज्नी रिलीज द थ्री लिटिल पिग्स। 1937 में सैन फ्रांसिस्को's आइकॉनिक गोल्डन गेट ब्रिज ऑफिशियली ओपन्ड टुडे। 200,000 पीपल वॉक्ड अक्रॉस इट ऑन डे वन। 1939 में बैटमैन मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस एवर। एंड ऑनेस्टली उसके बाद से हर देसी बच्चा अब्रॉड ऑल्सो विशेस फॉर अ डबल लाइफ। और हम तो जी भी रहे हैं, डे टाइम में कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और नाइट टाइम में शेफ एंड इमोशनल सपोर्ट फॉर रिलेटिव्स इन इंडिया। देन इन 1964 इंडिया लॉस्ट जवाहरलाल नेहरू जी, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अ लीडर हु हेल्प्ड शेप मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड इन 1998 पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट्स एंड ऑफिशियली बिकेम अ न्यूक्लियर पावर। और कुछ ऐसे चाय फ्रेंडली हिस्ट्री नगेट्स तुम्हें पता है तो फटाफट से मुझे डीएम करो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। एंड अ क्विक रिमाइंडर, इफ योर प्लेट इजंट ओवरफ्लोइंग आज के दिन विद ईद के पकवान, आर यू इवन डूइंग ईद करेक्टली? ईद मुबारक टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग टुडे। मे योर डे बी फिल्ड विद पीस, लाफ्टर, फैमिली, अनलिमिटेड बिरयानी एंड लॉट मोर। Stay tuned and stay hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: देखो, मुझे लाइफ में बॉडीगार्ड चाहिए ताकि मैं खुद के पैसे खुद से प्रोटेक्ट कर सकूं। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूं मिर्ची मॉर्निंग्स। गुड मॉर्निंग गाइस एंड लिसन टू दिस। एक्टर राम चरण हैज रिपोर्टेडली हायर्ड एन एमएमए फाइटर एज हिज बॉडीगार्ड एंड अपेरेंटली ही इज बीइंग पेड अराउंड 2-4 लाख रुपीज पर डे। मीनवाइल हमारे देसी पेरेंट्स आफ्टर हियरिंग दिस आर लाइक, बेटा तुम भी जिम ज्वाइन कर लो, इंजीनियरिंग तो वैसे भी तुम्हारे किसी काम नहीं आ रही है। द बॉडीगार्ड्स नेम इज केविन कुंटा। ओरिजिनली ही इज फ्रॉम गैम्बिया एंड पार्ट ऑफ इटलीज नेशनल एमएमए टीम बैक इन 2021। एंड नाउ ही इज अकंपनिंग रामचरण ड्यूरिंग प्रमोशंस फॉर हिज अपकमिंग मूवी पेडी। देखो, आजकल बॉलीवुड के प्रमोशंस ऐसे फील होते हैं जैसे एवेंजर्स के ऑडिशंस चल रहे हैं। पहले ना स्टार्स अपने सनग्लासेस पहनते थे, काले कपड़े, काली कॉफी लेकर ऐसे ट्रैवल करते थे जैसे यूएफसी की एनर्जी डिस्प्ले कर रहे हो। एंड इमेजिन बीइंग दैट प्रोटेक्टेड। और मैं तो यार टारगेट तक भी नहीं जा सकती विदाउट वन आंटी आस्किंग मी, ब्याह हो गया तुम्हारा, कांप काहे रही हो, वेयर इज माय एमएमए बॉडीगार्ड यार, जब ऐसे रिलेटिव्स ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। बट ओके, रिस्पेक्ट वेयर इट्स ड्यू। सेलिब्रिटी क्राउड्स कैन गेट इंटेंस एंड सेफ्टी ऑलवेज कम्स फर्स्ट, लेकिन स्टिल 4 लाख रुपीज पर डे। मैं सोच रही हूँ आर्जिंग छोड़कर बॉडीगार्ड ही बन जाती, थोड़ी बॉडी वॉडी बनानी पड़ेगी। बट व्हाट डू यू थिंक, बताओ मुझे डीएम करके, मैं कैसी लगूंगी बॉडीगार्ड बनके और किसका बॉडीगार्ड मुझे बनना चाहिए। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। फिलहाल तुम्हारे माइंड एंड हार्ट को गार्ड करने के लिए मिर्ची दर बैंगर्स प्लेइंग राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।
2: ओ चनती कुड़ी, ओ चनती कुड़ी।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या गाना है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पे तुम्हें मिलता है मिर्चीदार ऑसम म्यूजिक, ऑफ कोर्स थैंक्स टू माय प्लेलिस्ट। और अभी लेट्स चेक आउट हमारे वेदर का हालचाल, क्या चल रहा है। राइट नाउ इट्स अराउंड 66 डिग्रीज फारेनहाइट एंड क्लाउडी, बेसिकली हुडी वेदर है फिलहाल, विद अ साइड ऑफ डू आई रियली नीड टू गो टू वर्क, जो कि मुझे रोज ही लगता है। हेड्स अप दो, थंडरस्टॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टिल 9 AM। सो अगर तुमने बालों को मारने में 2 घंटे लगाए हैं तो आई एम जस्ट गोना से क्यूट, बट डोंट पैनिक, द रेस्ट ऑफ द डे इज लुकिंग प्रीटी डीसेंट विद पार्टली क्लाउडी स्काइज एक्सपेक्टेड अराउंड 5 PM। टुडेज टेम्परेचर इज हैंगिंग बिटवीन 66 डिग्रीज फारेनहाइट टू 82 डिग्रीज फारेनहाइट, एंड ऑनेस्टली दैट्स क्लासिक कंफ्यूज्ड वेदर। सुबह सुबह तुमसे चाय और ब्लैंकेट मांगेगी, आफ्टरनून कहेगा वेयर इज माई सनस्क्रीन, एंड इवनिंग में फिर से शॉल की जरूरत पड़ सकती है। गुड न्यूज दो, आज 0 mm की बरसात होने वाली है एक्सपेक्टेड overall in the next 24 hours. So do your laundry and finally stop living indoors. You can go out, have some coffee, meet some friends. And aaj ka high jo hai, it's pretty similar to yesterday's high. Kal 83 degrees Fahrenheit hit kiya tha and today it's gonna be around 82 degrees Fahrenheit. Thoda sa difference hai. It's just like saying I'm consistent but your boyfriend is not. So isi tarah weather ka hal chal janne ke liye mujhe sunte raho. Mera naam hai Priscilla. Show ka naam hai Mirchi Mornings. Mujhe connect karo Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRC. HIPRIS. WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी चलाते हैं कुछ गर्मा गर्म गाने तुम्हारे लिए, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, welcome to the second hour of Mirchi Mornings. My name is Priscilla, and now we are going to check out the stories from around the world.
0: Mirchi Hour got three.
1: सबसे पहले बायजूस फाउंडर बायजू रविंद्रन हैज रिपोर्टेडली बीन सेंटेंस टू 6 months इन जेल इन सिंगापुर ओवर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इश्यूज एंड यस द इंटरनेट इज शॉक्ड बिकॉज दिस इज द सेम गाय हु वंस बिकेम अ बिलियनेयर थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन एंड नंबर टू पर अमिड एन इंटेंस हीट वेव इन पेरिस केओस रिपोर्टेडली ब्रोक आउट ऑन अ पेरिस टू नाइस ट्रेन आफ्टर पैसेंजर्स स्टार्टेड स्ट्रगलिंग टू ब्रीद बिकॉज देर वॉज नो एसी ऑन बोर्ड यस नो AC in a heat wave. The train eventually had to stop mid-journey, causing around a 4-hour delay. Viral videos now show passengers standing outside on railway tracks trying to catch their breath, drink water and cool down in the shade. And finally, number 3 per CSK CEO Kasi Vishwanathan has spoken about MS Dhoni's IPL future amid all the speculation online. He basically said Dhoni will decide his own future and CSK will respect whatever role he chooses, player, coach, mentor, or anything else. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour with me, Priscilla. So, do the Mirchi Mornings. Mujhe follow karo Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है, मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर,
3: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ।
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: अपने सिर पे करवा ले।
3: शिवानी,
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना। शिवानी मेरी बात सुनो, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ूबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
11: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
12: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
12: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
11: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
16: Chamakte Sitare 2026.
15: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
17: Tera kya hoga, Kalia?
18: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
17: Ab... मिर्ची का
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला। सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। एंड लिसन टू दिस, अ नाइजीरियन पॉलिटिशियन हु क्लेम्ड ही वाज 30 इयर्स ओल्ड एंड हैड ड्वार्फिज्म हैज रिपोर्टेडली टर्न्ड आउट टू बी just 16 years old after a passport leak revealed his actual age. His name is Mehmood Sadis Buba. Apparently, he told supporters he was 30 so he could qualify to run for the National Assembly elections in 2027. But once the passport leak happened, he withdrew from the race. Bro, this is why desi parents are like, har cheez ka document rakhna chahiye, kyunki documents kabhi jhoot nahi bolte. Also, imagine being exposed by your very own passport. And honestly, South Asians abroad understand this very, very deeply. One age on arranged marriage ka bio data, another age on LinkedIn, and completely different emotional age after paying the rent in dollars. Okay, that's enough life lesson for the day. Let's talk about some sparkle right now. Shout out to RK Jewels, jahan pe tumhe mil rahe hain real diamond jewelry at real prices. Yahan par koi jhol jhal nahi hai. Yahan par tumhe pay karne hain zero hidden charges, zero labor charges, ya zero extra charges. और वो भी खालिस गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी तुम्हें मिल रही है, तो ऐसा मौका कोई कैसे जाने दे भला, वो भी ईद के स्पेशल ओकेजन पर। तो तुम्हारी ईद की ज्वेलरी शॉपिंग तो सेट हो चुकी है, फटाफट से पहुंचो आरके ज्वेल्स पर, जहां पर बेस्ट क्वालिटी मिलती है बेस्ट प्राइस पर। ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। फिलहाल बने रहो प्रिसिला के साथ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और फटाफट से जाओ मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। आने वाले कुछ मिर्चीदार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
5: Namaste, Salaam and Sastriyakal Bhaiyo aur Behno. I'm Sujit Singh, running for Congress in NJ12, a historic opportunity to bring your voice to Washington. Visit singforcongress.org and get engaged.
6: June 2nd, 2026. Early voting dates, May 26th to May 31st. Sujit Singh is the change we need.
5: Paid for by Sujit Singh for Congress.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Listener MI, back to back gana sunega.
8: Back to back gana sunega.
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
3: It's 9:30 AM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.

0: इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट.
2: Ajwal's wishes everyone happy and healthy morning. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,500 $4,500 पर ट्रेड के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं, नीचे ट्रेड कर रहे हैं. गोल्ड में डेफिनेटली एक एंट्री पॉइंट बनता है. गोल्ड में जो इन्वेस्ट करना चाहें, इन्वेस्टर गोल्ड बार्स 1 ounce 100 grams किलो बार्स पैम्प सर्टिफाइड गोल्ड और सिल्वर अवेलेबल एट राज ज्वेल्स. आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए हिंदुस्तान से जो अबाउट 15% सस्ता है अमेरिका में गोल्ड के प्राइस, गोल्ड बार्स में इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स के था. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: दैट वाज योर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टा और एक्स पर फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल.
3: तेरी मम्मी की जय.

लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. वेलकम टू द लास्ट आवर ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स एंड नाउ वी हेड स्ट्रेट इनटू
2: मिर्ची आवर का थ्री.
1: सबसे पहले अ हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट आउट ऑफ वर्जीनिया. एन इंडियन ओरिजिन वुमन नेम्ड मेघना बेन पटेल वॉज ट्रेजिकली शॉट ड्यूरिंग अ सस्पेक्टेड रॉबरी अटेम्प्ट एट अ सुपरमार्केट वेयर शी हैड रिपोर्टेडली वर्क्ड फॉर 10 इयर्स. सीसीटीवी फुटेज ऑफ द इंसिडेंट हैज सर्फेस्ड एंड द केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. सेंडिंग थॉट्स एंड प्रेयर्स टू हर लव्ड वंस बिकॉज नो फैमिली शुड गेट अ फोन कॉल लाइक दैट. नंबर टू पर द पुणे पोर्शा केस इज बैक इन कॉन्वर्सेशन आफ्टर अ वायरल वीडियो शो the accused juvenile's father Vishal Agrawal reportedly celebrating after getting bail, and the case continues to remain a huge talking point online. And finally, number three per US Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. went viral after posting a video casually picking up two snakes with his bare hands in Florida. Apparently, one snake even tried to bite him while his wife can be heard saying, "Honey, let them go, please." And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. With me, Priscilla, on Mirchi Mornings. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris. And WhatsApp par mera number hai 9033Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La
1: vieja la burga. Mirchi, burga. Hello.
2: हेलो, उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
1: हेलो
2: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठा यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
1: कहाँ भिजवाना है?
2: तो मैं आपको बता दूँ। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
1: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं, वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
1: हाँ
2: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ। सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो,
1: कहाँ से बोल रहे?
3: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
9: Did you know many communities across NJ12 feel underrepresented in Washington? Now, NJ12 has a rare open seat opportunity that may come only once in decades. Sujit Singh is running for the Democratic nomination for Congress in NJ12. Rooted in NJ12 for the past 15 years, Singh earned the trust of more than 5,000 residents in last November's election. Sujit believes every community deserves a voice in Washington. Please vote for Sujit Singh in this Democratic primary. Return your mail-in ballot if received. Early voting, May 26th through May 31st. Election June 2nd. Learn more at singforcongress.org. Paid for by Sujit Singh for Congress.
10: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Esalen.
12: You are listening to the MPZ Law Firm Show. Immigration Vows, Visa Serve Knows. US and Canadian immigration and nationality lawyers who speak your language.
13: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
14: Chamakte Sitare 2026.
13: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। अब बारी आ चुकी है हमारा भविष्य जानने की।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: इरीज यानी मेष राशि, आज जुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल करो। ओके, यू आर रेडी टू रोस्ट एवरीवन बिफोर ब्रेकफास्ट, बट स्टार्स आर सेइंग मे बी डोंट फाइट अथॉरिटी टुडे। ओके, लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर, लकी नंबर इज 11। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, स्टॉप प्रिटेंडिंग आई एम फाइन व्हेन क्लियरली यू नीड चाय एंड इमोशनल सपोर्ट। ओपन अप टू लव्ड वंस टुडे। आज का लकी कलर इज रोज गोल्ड, लकी नंबर इज 22। जेमिनी यानी मिथुन राशि, समवन मे नॉट लाइक योर bold opinions today, but honestly, when has that ever stopped a Gemini? Lucky color for you is neon green, lucky number is 5. Cancer yani Kark Rashi, don't overthink every tiny thing yaar, you are stronger than your browser history of panic googling, trust yourself today. Lucky color for you is crimson, lucky number is 18. Leo yani ki Sinha Rashi, you're craving an escape from routine, take that mini break, solo drive or dramatic टारगेट वॉक, मेन कैरेक्टर एनर्जी को एक्टिवेट करो दोस्त। लकी कलर फॉर यू इज आइवरी, लकी नंबर इज 3। वर्गो यानी कन्या राशि, यू एक्चुअली हैव मोर कंट्रोल देन यू थिंक टुडे, पुश द राइट बटन्स इमोशनली, प्रोफेशनली, मेंटली एंड फिजिकली, नॉट माइक्रोवेव बटन्स रैंडमली। आज तुम्हारा लकी कलर इज टील एंड लकी नंबर इज 14। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट 1। थोड़ी सी देर में पार्ट द्वितीय लेकर आऊंगी मैं, बोले तो प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। तब तक के लिए तुम ये मिर्ची दार बैंगर सुनो, मुझे जाकर फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। थोड़ा सा चिल मारो, रिलैक्स करो और स्टे ट्यून्ड रहो।

जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

में गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शार्क कैसे तुझे तेरे बस का लगा, ना मुझे ऐसे मस का लगा। रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा।

0: Priscilla, it's hot.
1: वेलकम बैक, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स और यहाँ पर हम स्टार्स की बातें पता करेंगे।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी तुला राशि, बिग अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग बट यू आर हेजिटेटिंग टू मच। आज रिस्क को थोड़ा सा स्पेशली करियर एंड मनी मैटर्स में ले डालो तुम। आज तुम्हारा लकी कलर इज मिंट सिल्वर, लकी नंबर इज 27। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, नोबडी कैन फोर्स यू इनटू एनीथिंग टुडे बट डोंट बी स्टबर्न जस्ट फॉर ओलंपिक लेवल एटीट्यूड। लकी कलर फॉर यू इज अजूर एंड लकी नंबर इज 9। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, आज अननेसेसरी ड्रामा अवॉइड करो। If there's an easy path available, take it. You don't need struggle for character development every day. Lucky color for you is navy blue. Lucky number is 31. Capricorn yani makar rashi, stop complaining about where you are right now. The universe placed you there for a reason, probably growth and taxes. Lucky color for you is khaki color. Lucky number is 6. Aquarius yani kumbh rashi, you've been pushing yourself too hard lately. Today's vibe is slow down, breathe, recharge and maybe stop answering emails instantly. Lucky color is ice purple. Lucky number is 17. And last but not the least, Pisces yani mean rashi, you already know change is coming. Go with the flow today. Instead of resisting it like desis resist winter jackets at 40 degrees. Lucky color for you is fuchsia. Lucky number is 24. And there you have it, Rashi Zone number 2 with me Priscilla on Mirchi Mornings. Aur ab Mirchi dar bangers chalate tumhare liye. Tab tak tum mujhe jaakar फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट। अच्छा।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: देखो डांस लाइक नोबडी इज वॉचिंग के लिए करेज चाहिए होता है. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स एंड इट्स टाइम फॉर मी टू रैप अप. लेकिन जाने से पहले, एक्ट्रेस रिधिमा पंडित रिएक्टेड टू अ वायरल रील ट्रोलिंग अनन्या पांडे's भरतनाट्यम फ्यूजन डांस सीक्वेंस फ्रॉम चांद मेरा दिल, जो उनकी लेटेस्ट रिलीज है. अपेरेंटली द रील जोक्ड दैट अनन्या लर्नड भरतनाट्यम फ्रॉम एन ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड रिधिमा सिंपली कमेंटेड गट्स. Honestly, internet comments these days deserve their own filmfare category. किस एक्टर ने सबसे ज्यादा बुरे कॉमेंट्स झेले हैं थ्रू आउट द ईयर, उनको एक अवार्ड मिल ही जाना चाहिए. क्योंकि एक रॉन्ग मूवी, एक रॉन्ग डांस स्टेप, एक रॉन्ग डायलॉग, ये सब के बाद everyone starts judging these celebrities. But hey, putting yourself out there publicly is not easy, यार. तुम किसको डेट कर रहे हो, तुम मोटे हो गए, पतले हो गए, तुम कौन सी फिल्म कर रहे हो, ये सब कुछ पर जज किया जाता है. आई मीन कॉन्फिडेंस की तो वाट लग जाती होगी, राइट? And despite that trolling, the film starring Ananya and Lakshya has actually been receiving positive reviews from critics. So moral of the story ye hai, just do your thing. Because no matter what you do, somewhere someone online or offline is going to judge you. So karo jo karna hai, khao, piyo, aish karo, aur isi note par. Eid Mubarak to everyone celebrating today. May your homes be full of happiness, your biryani perfectly layered and your Eidi emotionally satisfying. Thank you for hanging out with me this morning. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. You made the day better. Aur isi note par tada bye bye from me. Mujhse connect karo Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: चल रुचि, अब ना हम इन लोगों से कभी बात नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर हम जाते तो थे, लेकिन थोड़ी देर में वापस भी आ जाते थे।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. यार बचपन में कितना सिंपल था ना, लड़ाई होती थी तो हम कुछ देर बात नहीं करते थे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन बात नहीं करते थे, लेकिन एक कट्टी के बाद अब्बा भी हो जाता था और ये डेफिनेट होता था कि कट्टी के बाद तो अब्बा होगा ही होगा। हम बड़े हुए तो ईगोज भी बड़े हो गए, अब अब्बा होने में साल लग जाते हैं और कभी तो साल भी काम नहीं कर पाते हैं। बचपन में अब्बा करना कितना सिंपल था ना, तूने ऐसा बोला था ना रौनक को, अब उसे सॉरी बोल, और एक सॉरी से ना सबका दिल पिघल जाता था। लेकिन अडल्टिंग में सॉरी कौन पहले बोलेगा, इसमें ही ईगो अटक जाता है। आपको नहीं लगता हमने बड़े होते होते खुद को और लाइफ को भी कॉम्प्लिकेट कर दिया है? बचपन में सिर्फ एक ही चीज कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, एंड दैट वाज मैथमेटिक के सम्स, और अब सर से लेकर पांव तक कॉम्प्लिकेशन ही कॉम्प्लिकेशन। चलो अब इन कॉम्प्लिकेशंस की गुत्थियों को सुलझाते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और गाड़ी जब आगे बढ़ती है इस वक्त तो मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी 90 के गियर में लग जाती है, और मैं आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga.
2: Hello,
1: Mr. Gotham. Sir, I actually asked sir, I was request kar raha hai. I so aap suna hai wo singing, winging, sikhate hai sir. To sir, gaane ka thoda shauk hai. Main jo gaane gaata hu na, wo sir thoda different hote hain.
2: Aise kaise bol sakta hu jab tak aapko sunayenge nahi.
1: Pehle mohalle mein hamare snake nikla tha. To snake ka hi ghus gaya tha. To mere ko pehle wale bolte hain ki bhai aaja tu, aaja snake nikal de. Sir, main aapko main peshkash kar raha hu. Sir, har tarah ke gaane ga leta hu. Lekin meri speciality hai snake mein. Aur nagin kya hai sir? Nagina film dekhi aapne? Nagina Nagina film dekhi hai sir aapne?
2: हाँ सर, कुछ गाके सुनाएगा?
1: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद करने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने, है ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ सुबह।
1: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
2: कोंडा में कौन से गाने
1: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा, मन डोले मेरे, गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
2: सुन ले बात, मेरी बात सुन, पहले बात सुन।
1: हाँ सर,
2: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है ये बंद करो
1: सर। बोलिए,
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के घर नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
1: जी सर।
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: Itt Kisszát, only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, again.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
5: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155. सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
6: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: घर पर नया नया सीडी प्लेयर आया था, सारे कजन इकट्ठे हुए थे और मौका था कि यार कोई नई फिल्म देखते हैं। पता हमने कौन सी फिल्म देखी? चाइना टाउन।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, Chinatown was a film जिसको देख करना हमने बड़े मजे किए थे। Because of the reason कि यार ये फिल्म थ्रिलर भी थी और कॉमेडी भी थी। क्या हंसे थे और क्या घबराए थे, दोनों ही चीजें हमने एक साथ करके मिक्स्ड इमोशंस वाला जोन जो हो जाता है ना, वो हुआ था इस फिल्म को देखते हुए। लेकिन बिहाइंड द सीन की बात आपको बताती हूँ कि जब ये फिल्म लॉन्च हो गई थी, कि ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि ऐसी ऐसी एक फिल्म आने वाली है, सो उस वक्त जो कास्ट थी दैट वॉज अनिल कपूर, अक्षय कुमार, रानी मुखर्जी एंड विवेक ओबरॉय। लेकिन सारे के सारे स्टार्स जो थे ना, वो अपनी अपनी वजहों की वजह से ड्रॉप्ड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसके चलते अक्षय खन्ना अनिल कपूर की जगह आए, शाहिद कपूर अक्षय कुमार की जगह आए, करीना कपूर रानी मुखर्जी की जगह आई एंड फाइनली उपेन पटेल जो थे ही वॉज रिप्लेस्ड बाय विवेक ओबरॉय। एंड ये उपेन पटेल की डेब्यू मूवी थी। सैडली उन्होंने लीड रोल में तो ऐसी कोई खास मूवी करी नहीं, लेकिन डेब्यू फिल्म में ही वो वायरल से हो गए थे, अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं। एक्चुअली हुआ ये कि इस फिल्म के अंदर उपेन पटेल का जो नंबर दिया गया था, लाइक बोला गया था वो नंबर, दैट टर्न्ड आउट टू बी अ रियल नंबर, और वो भी मुंबई के किसी डॉक्टर का नंबर था, जिसको कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद न जाने कितने कॉल्स आने लग गए थे कि वो बंदा जो है वो परेशान ही हो गया था। बेचारे उपेन फेमस भी हुए तो किस वजह से। खैर, पब्लिसिटी कैसी भी हो, पब्लिसिटी होती है, ये भी एक बात है। चलो जी, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: तेरे नाम

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: वैसे हमारी रगों में इतना बॉलीवुड दौड़ता है कि अगर कोई आ आ आ करता हुआ अटक जाएगा ना, तो हम उस बात को पूरा करते हुए कह देंगे, आशिकी में तेरी जज जज जाएगी जा मेरी।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ये गाना क्या था मेरे यारा, चाइना टाउन का ये गाना वॉज अ हिट अपने जमाने का। बाय द वे, चाइना टाउन वॉज डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान एंड ये फिल्म उनके सिग्नेचर स्टाइल में बनाई गई थी। और उनका सिग्नेचर स्टाइल पता है क्या है? वो ये है कि उनकी जितनी भी थ्रिलर्स आती है ना, उसका ट्विस्ट यही होता है कि हर एक इंसान जो कि उस फिल्म में नजर आ रहा होता है ना, हर एक इंसान के ऊपर हमारा शक जा रहा होता है कि यार ये भी मर्डर हो सकता है, नहीं यार मर्डर तो ये लग रहा है, नहीं मर्डरर तो वो है, और फिर मर्डरर तो अंकल निकले। एंड इस फिल्म में ना सिर्फ अब्बास मस्तान का सिग्नेचर स्टाइल इस्तेमाल हुआ है, इस फिल्म में जो वो लैविश मैंशन दिखाया गया है, विच वॉज द चाइना टाउन विला नंबर 36, जहां पर कि वो मर्डर होता है, उसको बनाने के लिए भी बड़ा दिमाग लगाया गया था। एंड उस पूरे बंगले को स्पेशली इस मूवी के लिए बनाया गया था, और बहुत जबरदस्त तरीके से इस तरीके से उसको स्टाइल किया गया था कि ना उस बंगले से ना मिस्टीरियस वाइब्स आनी चाहिए, विच आई थिंक दे वर सक्सेसफुल इन डूइंग। लेकिन एक और बात ऐसी है इस फिल्म के बारे में जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, और वो ये कि उस दौर में सबसे एक्सपेंसिव गाना जो बना था वो चाइना टाउन का गाना था, जिसमें उपेन पटेल और ईशा कोप्पिकर हैं। उस गाने को बनाने के लिए 30 लाख रुपए लगाए गए थे, जो कि अच्छा खासा बजट था उस जमाने के हिसाब से। इनफैक्ट आज के टाइम पर भी होगा यार, वो अलग बात है कि आजकल 30 लाख रुपए में कोई फ्लैट नहीं आएगा, लेकिन हाँ 30 लाख रुपए में कोई अच्छी खासी हाई एंड मॉडल की गाड़ी जरूर आ जाएगी। वैसे तो यूजुअली कहते हैं कि पैसा बोलता है, लेकिन जब चाइना टाउन में एक गाने के लिए इतना पैसा लगाया गया तो पैसा भी गाने लगा ना। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: There was this moment in K3G जब करीना कपूर ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन तहे दिल से चाहती थी कि पू बनी पार्वती अब ये हो ही जाए, लेकिन वो इतनी डेस्परेट थी कि वो ऐसा कर जाएंगी, ये तो हमें करण ने बताया।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का फिटारा। एंड जब K3G की शूट हो रही थी, at that time, करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बताया कि there was this scene, आपको और मुझे, हम दोनों को ये सीन याद है बहुत अच्छी तरीके से, जब शाहरुख खान और जया बच्चन एक दूसरे से सालों बाद मिलते हैं थैंक्स टू ऋतिक रोशन। एंड होता ये कि दूर से काजोल इज वॉचिंग, दूर से ऋतिक रोशन इज वॉचिंग, एंड देर इज अ करीना कपूर ऑल्सो इन द फ्रेम हु इज वॉचिंग। यू नो, यहाँ माँ बेटे जो है वो इतने सालों बाद मिल रहे हैं। काजोल के इमोशन जस्टिफाइड, ऋतिक रोशन के इमोशन जस्टिफाइड, लेकिन पू, यू नो व्हाट रियली हैपेंड वाज कि जब ये सीन शूट हो रहा था, एट दैट टाइम करण जौहर ने पहले ही बोल दिया था कि यू नो, मतलब बहुत ज्यादा रोना नहीं है लेकिन रोना है। और जैसे ही करण जौहर ने बोला एक्शन, तो करीना कपूर भय करके रोने लग गई, जिसपे करण जौहर को थोड़ी देर बाद बोलना पड़ा कि तुम क्यों इतना रो रही हो, वो तुम्हारा भाई नहीं लगता, वो तुम्हारे पापा नहीं लगते, तो why is it that तुम्हारा कैरेक्टर इतना रो रहा है। जिसका कमबैक जवाब करीना कपूर ने करण जौहर को ये दिया कि आई एम एन एक्टर ना, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, बिकॉज देयर वर एक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, काजोल हु वर देयर इन द फ्रेम्स ऑफ कॉज। करीना को लगा कि यार मैं कब एक्टिंग करके बताऊंगी, यार इस पू के अंदर जो पार्वती है वो आखिर कब तक चुप बैठेगी। फाइनली एक दिन तो उसको निकल कर आना ही है, तो करीना ने सोचा कि आज ही शायद वो दिन है, बट नॉट रियली। आई मीन ऑफ कोर्स उसको रीशूट किया गया एंड देन थोड़े बहुत करीना के इमोशंस दिखाए गए ऑन स्क्रीन, नॉट द बाल्टी भर के रोना वाला सिनेरियो। हाँ, अब एक बात बताओ, आप अपने बॉस को अपने काम को लेकर इतना जस्टिफाई करते हो जितना करीना कपूर जस्टिफाई करने चली थी? डीएम करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, Uscabana, Sacabana. Rabana. Burga, Burga. La Virpa, la Burga. Mirchi, Burga.
2: हेलो.
3: हाय शिवानी.
2: हाय.
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ. शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे. अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता. अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए. वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: से खर्च के गाड़ी खरीद ले.
3: ये सिर्फ 3
2: करता होगा.
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा.
2: अपने सिर पे करवा ले.
3: शिवानी,
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ. इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज.
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं,
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ. मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ुकु.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear social media और फोन के चुराए हुए वक्त,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हारी बड़ी याद आती है यार, वो दिन जब हम बेफिक्र होकर गलियों में खेला करते थे, जब दोस्तों से मिलने के लिए घर के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, जब बातचीत आंखों में देखकर होती थी और जब हंसी का शोर सिर्फ दिलों तक नहीं पूरे माहौल में गूंजता था। तब शामें छतों पर कटती थी, तारों को निहारते हुए सपने बुने जाते थे, किताबों के पन्नों की खुशबू में घंटों डूबे रहते थे और खत लिखना वो एक एहसास हुआ करता था। हर एक लफ्ज में इमोशंस जिंदा रहते थे। आज फोन की स्क्रीन पर उंगलियां चलती हैं, पर रिश्तों में पहले जैसी गहराई नहीं है यार। दोस्त ऑनलाइन तो हैं, लेकिन पास नहीं। दिल की बातें अब स्टेटस में बदल गई हैं और खुशियों को लाइक्स और कमेंट्स में गिनने लगे हैं। मेरे प्यारे स्मार्टफोन और सोशल मीडिया में खोए हुए वक्त, दिल आज भी तुम्हारी तलाश में ही है। काश फिर से वो दिन लौट आए जब हम सच में जिया करते थे, ना कि सिर्फ ऑनलाइन मौजूद रहते थे। तुम्हारी याद में खोई हुई इंसान, तुम्हारी सारा, जो आज भी तुम्हारी राह तकती है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
4: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
5: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
0: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, इज़िलिन।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ओम शांति ओम से ये गाना गूजबम्प्स दे देता है यार।
2: मिर्ची 90s का सेट।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, गूजबम्प्स तो इस गाने ने दिए हैं, एंड आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द म्यूजिक जो कि विशाल शेखर ने कंपोज किया है। बिकॉज यू नो देयर आर टाइम्स जब आप इस गाने को सुन रहे होते हो और पूरे खो जाते हो उस गाने को सुनते सुनते ना, तो द म्यूजिक टेक्स यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। आई डोंट नो हाउ डज म्यूजिक हैज दैट मैजिक टू टेक यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, बट यस इट डज हैपन। ऊपर से सोने पे सुहागा आर द लिरिक्स ऑफ दिस गाना, वेल ब्यूटिफुल लिरिक्स आई मस्ट से। एंड ये जो लिरिक्स है ना इस गाने के, ये क्लियरली इस बात को दर्शाते हैं कि जब आपको कोई इंसान या कोई चीज या कोई सिचुएशन भी ले लो यार, बहुत पसंद आ रही होती है ना, बहुत ज्यादा, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आप उसे एक्सप्लेन कैसे करो कि ये कितना अच्छा लग रहा है या कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस गाने में जब बंदा बंदी के लिए ये लाइन्स गा रहा है ना कि तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबा में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सको। ओए होए, मैं आपको सच बात बताऊं, ये फीलिंग मुझे कब आई है, प्यार मोहब्बत में नहीं आई है। अक्सर ऐसा होता है ना कि रात के अंधेरे में आप छत पर चढ़ जाते हो और चांद देख रहे होते हो, एंड मेरे साथ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि चांद को देखने के बाद ना एक अलग ही एनर्जी आती है बॉडी के अंदर। और एक टाइम ऐसा आता है जब आप आसमान में चांद तकते रहते हो ना, आपको वो चांद इतना खूबसूरत लग रहा होता है, इतना खूबसूरत लग रहा होता है कि आपका दिल कर रहा होता है कि इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है और मैं इस बात को किस तरीके से बयां करूं कि चांद कितना खूबसूरत है। और तभी ये लाइंस मेरे दिमाग में भी अक्सर आई है कि तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कि यार तुम दिख तो रहे हो आसमान में, तुम्हें देख तो रही हूँ मैं, लेकिन तुमको पाकर भी मैं एक तरीके से तुम्हारे अंदर खो चुकी हूँ। और अगर मैं कहना भी चाहूँ ना तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं किस जुबान में ये बात कहूँ, क्योंकि मेरे पास लफ्ज नहीं होते हैं कि चांद कितना खूबसूरत लग रहा होता है। इनफैक्ट हर बार मैंने एक कोशिश करी है कि अपना फोन निकाला है और उस चांद की खूबसूरती को कैप्चर करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे पास क्या, फोन की लेंस के पास भी वो जुबान और वो नजरें ही नहीं है कि वो उसकी खूबसूरती को जिस तरीके से वो आसमान में नजर आ रहा होता है ना, अपने लेंस में कैप्चर कर पाए। अब बताओ आपके साथ कभी ऐसा हुआ है चांद को लेकर? इंसान को लेकर तो अक्सर इंसान के साथ ऐसा होता ही होता है। तो चलो, दोनों में से जो भी आपके साथ पहले हुआ है या हुआ है, डीएम कर दो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, उसका जिक्र करते हुए। और अभी फिलहाल के लिए यही गाना चलाते हुए मैं यहाँ से जाती हूँ और आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार की, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं मिल ही जाऊंगी आपको ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

कई बार मुझे समझ नहीं आता कि पुरानी फिल्मों के नाम किस बेसिस पे रखे जाते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जिनका फिल्म के पूरे सब्जेक्ट से, पूरी फिल्म से ऐसे कोई खास तालमेल नहीं है। जैसे आपकी कसम मूवी, तो इस फिल्म में राजेश खन्ना एक शक की हस्बैंड प्ले करते हैं जो अपनी वाइफ मुमताज पे शक करते हैं और अपनी शादीशुदा लाइफ, लव लाइफ पूरी ऐसे तबाह कर लेते हैं। अभी इसमें आपकी कसम का क्या मतलब है टाइटल का, है ना? शक की पति, ऐसे ऐसा नाम ज्यादा सूट करता है इस फिल्म को। खैर जो भी है, आपकी कसम गाना बहुत अच्छा है, पुरानी जीन्स पर सुन लेते हैं। मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, sabka bana. Ya bana. Murga, murga. Naviyat wala murga. Mirchi murga.
2: Hello.
3: Hello, usko wahan se mat uthao yaar. Hello.
2: Hello.
3: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं, जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: तो मैं आपको बता दूँ। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
2: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको,
2: सामान
3: उठवा।
2: क्या कर रहा
3: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो,
2: कहाँ से बोल रहे?
4: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Inefficient.
9: Very complex.
10: Clumsy or
11: confusion ही confusion.
6: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
12: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
13: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
12: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
13: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
14: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
16: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
17: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
16: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
19: एक ही होता है।
16: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

जल भुन के खाक हो गए थे ऋषि कपूर और काफी इनसिक्योर भी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई सागर फिल्म को ऐसी बहुत बड़ी फिल्म माना जा रहा था, ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया के साथ वापस आ रहे हैं, बॉबी का सक्सेस रिपीट होगा, ये वो फलाना डिमका, दोनों साथ में आए, लेकिन फिल्म की सारी लाइमलाइट कमल हासन साहब ले गए। और कमल हासन साहब और डिंपल कपाड़िया का जो उसमें सॉर्ट ऑफ दोस्ती रिश्ता दिखाया गया था उसको ज्यादा पसंद किया गया। और तो और इस फिल्म के लिए डिंपल कपाड़िया को बेस्ट एक्ट्रेस का और कमल हासन को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया, विच काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड ऋषि कपूर, विच इज एक्चुअली नेचुरल ऑल्सो यार, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोफेशन और लाइफ होता है। आप अपने साथ वालों के लिए खुश होते हो लेकिन अपने लिए भी दुखी हो जाते हो जीवन में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
6: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Listener MA, back to back gana sunega.
9: Back to back gana sunega.
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
10: It's 1:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Purani jeans. With Charu. Only on.

0: लिरिसिस्ट गुलशन बावरा ने पुराने टाइम के और लिरिसिस्ट के कंपैरिजन में गाने थोड़े कम लिखे हैं, लेकिन जो लिखे हैं
1: क्या लिखे हैं?
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार उनसे उनके फेवरेट गाने के बारे में पूछा गया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
2: ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि मेरा सबसे पसंदीदा कौन सा गाना है, लेकिन मुझे एक गाने का जरा वो जो मेरे दिल पे चोट लगी थी और जो मैंने लिखा था वो मुझे काफी अच्छा लगता है। वो है चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ा। वैसे तो मेरे देश की धरती सोना उगले वो भी बहुत पॉपुलर हुआ, जारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, इन दोनों गानों पे मुझे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले, लेकिन वो गाना मुझे कुछ चांदी की दीवार न तोड़ी दिल को थोड़ा सा।
0: वेल, ये तो हुई इनके फेवरेट गाने की बात, लेकिन यहाँ पे हम सुनेंगे एक गाना जो पता नहीं कितने लोगों का, शायद पूरी जेनरेशन का फेवरेट गाना है, क्योंकि इसके इतने कवर वर्जन बन चुके हैं, इसके रीमेक्स रीमिक्सेस बन चुके हैं। मुझे तो ये गाना बहुत पसंद है, आई एम श्योर आपको भी पसंद है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
5: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

बचपन में ऐसे लगता था इस गाने में बोल रहे हैं कि आशियाना ढूंढते हैं, साबुदाना ढूंढते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। बड़े होके समझ में आया आबुदाना का मतलब, इस गाने में भी, रियल लाइफ में भी, खाना पीना, रोजी रोटी, और जो रोजी रोटी कमाने के चक्कर में अपने घरों से दूर रह रहे हैं, अकेले भी रह रहे हैं, वो कुछ लाइन्स से बहुत रिलेट करेंगे। ये लाइन्स शहपर रसूल नाम के शायर हैं, इन्होंने लिखी हैं। कोई साया न कोई हम साया, कोई साया न कोई हम साया, आबोदाना ये किस जगह लाया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

1981 की फिल्म कुदरत 1979 में बननी शुरू हुई थी, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से डिले होती गई, जैसे प्रोड्यूसर B.S. खन्ना, डायरेक्टर चेतन आनंद और एक्टर राजेश खन्ना के बीच में काफी डिफरेंसेस प्रॉब्लम्स आ रही थी। राजेश खन्ना बाय देन हैड स्टार्टेड थ्रोइंग अ लॉट ऑफ टैंट्रम्स। एक चीज जो सुनने में आती है कि इस फिल्म में मेन लीड में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी थे, साथ में राजकुमार, प्रिया राजवंश एंड विनोद खन्ना भी थे। और विनोद खन्ना की कुर्बानी फिल्म जब रिलीज हुई तो वो बहुत पॉपुलर हो गए। उनकी इस पॉपुलैरिटी से राजेश खन्ना थोड़े से इनसिक्योर हो गए और कुदरत फिल्म के पोस्टर्स जो लगे थे, उनकी जो भी प्रमोशन हो रही थी, उससे उन्होंने विनोद खन्ना की फोटोज जो हैं वो हटवा दी। ऐसा सब सुनने में आता है, और भी बड़ा कुछ हुआ था। करते रहेंगे बातें, लेकिन अभी बातों पे ब्रेक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू, आपके साथ सुनते रहिए मिर्ची

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची
1: हेलो।
2: हाय शिवानी।
1: हाय।
2: हाय शिवानी, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
1: समाचार?
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
1: फेवर,
2: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
2: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ
2: मेरी बात
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3
1: करता
2: हूँ। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले
2: शिवानी।
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो।
1: नहीं
2: नहीं, बत्तमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बत्तमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कांग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ुकु
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरु।
7: You are listening to the MPZ Law Firm Show. Immigration bows, visa serve knows. US and Canadian immigration and nationality lawyers who speak your language.
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कौन है हिट हो गई थी, बिकॉज इसमें हीरो हीरोइन की कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज थी। एक तरफ जहां शम्मी कपूर साहब का पागलपन था, वहीं बबीता कपूर का पॉइज, ग्रेस। वैसे बबीता कपूर ने एक्चुअली अपने देवर ससुर के साथ इस फिल्म में काम किया, अंकल इन लॉ क्या बोलेंगे। खैर, रणधीर कपूर से तो उनकी शादी बाद में हुई थी। कमिंग बैक टू तुमसे अच्छा कौन है मूवी, सो शम्मी कपूर का पागलपन एंड बबीता की ग्रेस। ऐसा सुनने में आता है कि बबीता जी को बहुत ज्यादा ऐसे मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत ज्यादा रिहर्सल्स करनी पड़ी थी टू मैच अप विद शम्मी कपूर की एनर्जी। फिल्म भी हिट हुई थी और इसके गाने भी पॉपुलर हुए थे, खास करके ये वाला जो हम सुनने वाले हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
7: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూసివ్ డైమండ్ స్టోర్.
8: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సోలిటేర్స్ నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
9: It's 2:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
10: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
11: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
10: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है.
10: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: भाई वैसे तो अनुराधा पौडवाल 90s की प्रोमिनेंट सिंगर रही हैं, लेकिन इनकी शुरुआत 70s में ही हो गई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक इंटरव्यू में इस बिगिनिंग के बारे में सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मैंने शुरू किया 1973 से फिल्म अभिमान से। अभिमान का उस वक्त बैकग्राउंड चल रहा था एंड बरमिंदर दा वांटेड अ श्लोक, सो ही टोल्ड माय हस्बैंड अरुण जी जो ही वाज असिस्टेंट डायरेक्टर टू बरमिंदर कि मुझे कोई संस्कृत का श्लोक चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ये ट्यून किया है तो इसे थोड़ा घर के टेप रिकॉर्डर के ऊपर तुम थोड़ा गा दो। जैसे वो लेके गए बरमिंदर के पास तो उन्होंने पूछा है किसने गाया है, व्हाई डोंट वी रिकॉर्ड दिस, इन्हीं की आवाज में हम श्लोक रिकॉर्ड करते। सो दैट टर्न्ड आउट टू बी मतलब प्योर डेस्टिनी एंड That turned out to be the beginning of my career.
0: और actually 70s में उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाने गाए, कुछ बहुत हिट फिल्मों में भी गाने गाए, लेकिन उनके गाए गाने उतने हिट नहीं हुए। उनके करियर का पहला हिट गाना आया 80s में। अजी बहन और भाइयों, उस साल का बेहद लोकप्रिय गीत जो 1984 की गीत माला में अब पायदान नंबर एक पर था, फिल्म का नाम हीरो, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने इसे सुरों से सजाया, आनंद बख्शी के बोल और आवाज मनहर और अनुराधा की। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजिलिन।
5: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
7: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
0: Purani Jeans, Charu ke saath, sirf Mirchi par.

एक थप्पड़ की गूंज सुनी थी अमिताभ बच्चन साहब ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये फिल्म थी 1978 की कस्मे वादे, जिसमें अमिताभ बच्चन और राखी का एक सीन था। सीन में ऐसा कुछ होता है कि राखी जी को अमिताभ बच्चन को एक थप्पड़ मारना होता है, तो अमिताभ बच्चन थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उनको ऐसा लगा कुछ टाइमिंग गड़बड़ हो गया, जैसे उनको लगा कि तीन डायलॉग के बाद थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन वो थप्पड़ दो डायलॉग के बाद ही पड़ गया। तो राखी जी ने एक बार एक इंटरव्यू में ऐसा शेयर किया था कि वो जो एक्सप्रेशन है उस फिल्म में थप्पड़ पड़ने के बाद वाला, अमिताभ का जो एक्सप्रेशन है एकदम हैरानी वाला, वो रियल है, बिकॉज उस टाइम वो थप्पड़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 3 p.m. Mirchi Time Check, brought to you by RK Jewels. RK Jewels, jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels, best quality, best price.
2: इंडी टॉप 10
3: कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
4: मिर्ची सुन रहे हैं आप. बंदी का नाम है आरजे कनिका और अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है. सम स्पेशल सरप्राइजेस, ऑल दिस एंड मोर. तो सीधा शुरुआत करते हैं हफ्ते के काउंटडाउन के विद गाना नंबर 10. मिका सिंह दैया द रैपर का गाना, गाने का नाम है छोरी. दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, छोरी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी. पिछले हफ्ते से ये गाना दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है. ए अजनबी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. छोरी ऑन नंबर 10, ए अजनबी ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: नंबर 10.

0: आदित्य रिखारी, रैबिट और कुटले खां का गाना, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। गाने का नाम है ए अजनबी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए। दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: यू आर लिस्टिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। गाना नंबर 9 पर हमने आदित्य रिखारी एंड कुटले खां को एक गाने में सुना। आदित्य रिखारी, हु इज द पॉप सेंसेशन, कुटले खां राजस्थान के फोक म्यूजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो इतने अलग दुनिया के आर्टिस्ट सिर्फ कोक स्टूडियो ही एक गाने में ला सकता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक नई एंट्री है, एंड दिस इज अ डेब्यू जो हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बिकॉज अदनान सामी इज बैक विद अ न्यू सॉन्ग। अदनान सामी के गानों के बारे में हम जैसे ही सोचते हैं तो वो पावरफुल रोमांटिक बैलेड्स याद आते हैं।

0: बट जो उनका नया वाला गाना है इट्स अ हाई एनर्जी पॉप प्रोडक्शन. रस्टिक इंडियन टेक्सचर्स भी हैं, थोड़े राजस्थानी इन्फ्लुएंसेस भी हैं, बट इट्स ऑल दैट अदनान सामी इज वेरी वर्सेटाइल. गाने का नाम एक्चुअली लिपस्टिक है. पूरा गाना हम अभी आपके लिए प्ले करने वाले हैं. दिस सॉन्ग इज ट्राइंग टू ब्रेक द स्टिग्मा अराउंड लिपस्टिक, स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटी में जहाँ थोड़ी बोल्ड लिपस्टिक लगा लिया, रेड शेड ज्यादा रेड हो गया तो ऑफिस में ही चार लोग टोक देते हैं. गाने की जो म्यूजिक वीडियो है फीचर्स वुमेन ऑफ ऑल जेनरेशंस, older women, small town characters. You will see someone you know in this music video. But the best part is how Adnan Sami is fully playing a character in the video. Expressive styling, very transformed look. Unke surme pe dhyan dena. But gana unhone bahut fun banaya aur bahut waqt ke baad hum ek aisa high peppy pop gana sun rahe hain from Adnan Sami. Apne radio sets ki volume bada lijiye. Naya Naveela gana debut kar raha hai seedha on gana number 8. Adnan Sami ki composition, Adnan सामी की आवाज में, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स. गाने का नाम है लिपस्टिक. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. Hello,
2: Mr. Gotham.
1: कौन बोल रहे हैं
2: सर? मैं एक्चुअली आपसे ना वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आप सुना है आपसे वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: सर कुछ गाके सुनाई?
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर। वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
2: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: कौन से गाने
2: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज़, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश करूँ? तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
1: सुन ले बात, मेरी
2: बात
1: सुन, पहले बात सुन।
2: हाँ सर।
1: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: सर, बोलिए।
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
2: जी सर।
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: Lead ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, again.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Tera kya hoga, Kalia?
9: Sardar, main aapka namak khaya, Sardar.
8: Ab, mirchi kha.
1: Radio Mirchi, it's hot.
10: Ghana Indie Top 10
11: Kanika ke saath on Mirchi.

0: मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिटर और एंड स्वरा वर्मा की आवाज, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना दिलजीत दोसांझ का गाना डीलर, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन नीचे ड्रॉप करके ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। अभी के अभी कनेक्ट करो, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम। कोई गाना शेयर करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। देयर आर सम आर्टिस्ट जो सिर्फ गाने नहीं बनाते हैं, वो प्रॉपरली अपने गानों से ऑडियंस की अटेंशन को होल्ड करना जानते हैं। And one of such artists is Himesh Reshamya. He's back with a new song. Unke naye gaane ka naam hai Sharab. I really think Himesh could have chosen some other word for the song. Mujhe thodi problem hai. Lekin meri is problem se mujhe is gaane ke baare mein kya feel hota hai, wo change nahi hota. Interesting baat to ye hai that this song is absolutely through and through Himesh, but also sounds very new. Wahi larger than life energy hai. Kaafi dramatic sa romance hai. Ek instantly pakad mein aa jaane wala hook. But there is some twang in the song. That Rajat Nagpal effect को सुनाई देगा, जैसे कि किसी गाने को एकदम ग्लॉसी कोट कर दिया है। राणा सोतल के लिरिक्स हैं, द वीडियो फीचर्स मनुषी चिल्लर, सो द ओवरऑल पैकेज इज इनक्रेडिबल। इनफैक्ट आई वुड गिव थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर अश्काय हु मेड मी सी द म्यूजिक वीडियो, एंड देन मेरा थोड़ा सा ओपिनियन इस गाने के बारे में बदला, बिकॉज जब मैंने सिर्फ ऑडियो सुना आई थॉट यार ये गाना कैसे हिमेश के फैंस को पसंद आएगा, बट देन दैट्स व्हाट हिमेश रेशमिया डज, किसी ना किसी तरीके से हमारा अटेंशन ग्रास्प कर लेते हैं। आई स्वेयर जब मैंने म्यूजिक वीडियो के साथ ये गाना सुना तो मैंने वापस रिपीट किया और वापस म्यूजिक वीडियो देखा। चाहे आप सीरियसली सुनो, नॉस्टैल्जिक होके सुनो, आयरोनिकली सुनो, यू विल टॉक अबाउट हिमेश रेशमिया एंड हिज न्यू सॉन्ग। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। हिमेश रेशमिया का गाना, रजत नागपाल, राणा सोतल की कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, गाने का नाम है शराब। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: करण औजला एकी का गाना फ्रॉम पी पॉप कल्चर 25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बॉयफ्रेंड इज ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली रियली जेन्युइनली आई स्वेयर प्रॉमिस आई बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर मैं 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने आपके साथ शेयर करती हूँ। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

गाने का नाम है तेरा चेहरा बाय द वन एंड ओनली अदनान सामी। ये गाना साल 2002 में रिलीज हुआ था, अदनान सामी की एल्बम तेरा चेहरा का ही पार्ट है। म्यूजिक खुद अदनान ने कंपोज किया था, लिरिक्स समीर के हैं एंड इस गाने की वीडियो में है रानी मुखर्जी। उस साल की सबसे सक्सेसफुल पॉप एल्बम्स में से एक थी तेरा चेहरा। आई रिमेम्बर इस एल्बम के थ्रू ही हम अदनान सामी की दुनिया से इंट्रोड्यूस हुए थे एंड कुछ इतनी मैसिव कोलैबोरेशंस थे इस एल्बम में विद रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन। बट जो ये गाने हमें आज याद हैं, ना ही ये कोलैबोरेशंस की वजह से हैं, ना ही उन गाने म्यूजिक वीडियोस की वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, इट्स बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन। गाना नहीं भाई, अदनान सामी पूरा माहौल बनाते थे। उनका हर गाना एक मिनी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगता था। पियानो स्ट्रिंग्स, वो स्ट्रेच्ड आउट लॉन्गिंग इन हिज वॉइस, ऐसा लगता है कि बस गाना आपके लिए गा रहे हैं। स्पेशली द सॉन्ग तेरा चेहरा, द लिरिक्स, ये जमीन रुक जाए आसमां झुक जाए, इतना ड्रामा, उफ। एंड अदनान सामी की वॉइस जस्ट टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल, चीजी एंड हाउ। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, अदनान सामी एट हिज अल्टीमेट बेस्ट, साल 2002 का गाना अदनान सामी की आवाज में, दिस इज तेरा चेहरा ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका, एंजॉय।

Man Oh Man, Tera Chehra is one of those songs that nostalgia nahi balki ek pura zamana yaad aa jata hai. Adnan Sami ki awaaz mein that was Tera Chehra on a cassette classic this week at RJ Kanak on Instagram par aao. And this is where gaane share karne ki baari aati hai. 90s या 2000s का वो कोई भी आइकॉनिक इंडी पॉप गाना जिसको आज भी आप सुन के फुल नॉस्टैल्जिक हो जाते हो, हमसे आके शेयर करो एट आरजे कनिका पर अपना रिकमेंडेशन दो. अशकाय मेरा साउंड प्रोड्यूसर और मैं, हम बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं आपके रिकमेंडेशंस के. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. संजू राठौड़ का बैंगल्स पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जंप करके दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 3. उसके बाद अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है अर्ज किया है. कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 2. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Mirchi sun rahe hain aap. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJ Kanika. The show is all about the hottest pop music of the week. Now, Ghana number 10 se Ghana number 2 ka safar hum pura kar chuke hain. Before I take you to the numero uno song of the week, a quick recap karte hain right from the top. इस हफ्ते गाना नंबर 10 पर था मीका और दया द रैपर का छोरी। देन आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खा का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 9। गाना नंबर 8 पे डेब्यू किया अदनान सामी के गाने लिपस्टिक ने। दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 7। जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डाब दबी ना। देन मिट्टा रोर का शीशा ऑन गाना नंबर 6। तेरी आंखें पीछे लंके सुन दो ना छोरी का हर रंग। दिलजीत एंड सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 5। करण औजला 21-25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार बॉयफ्रेंड दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। संजू राठौड़ का बैंग गर्ल्स ऑन गाना नंबर 3। फिर हमने सुना अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 2।
2: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में।
1: It's time for the numero uno song of the week, yani is hafte ka gana number 1. This song is absolute treat. What a beautiful mix in this countdown. Gaane ka naam hai Bairan, ek Haryanvi song jo mujhe pata hai ki aapke Instagram ke har teesre scroll mein aap ye gana sun rahe hain. Banjare ki composition, unhi ke lyrics, unhi ki awaaz. Bairan is playing right next for you on gana number 1. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 1.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Tera kya hoga, Kalia?
8: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
7: Ab, mirchi kha.
9: Radio Mirchi, it's hot.

0: Milci.
1: Buscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो.
3: हाय शिवानी.
2: हाय.
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार.
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ. शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे. अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता. मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए. वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले.
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ.
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा.
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ. इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज.
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत करना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं
3: नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ. मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ोबी शाला, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ुकु.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें. मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर.
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन.
9: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1,000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज. Comes the naan, the same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Beep cow to jano.
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants, and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है.
12: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
16: It's Vijaya back on the Immigration Hour, brought to you by the NPZ Law Group, also known as VisaServe, offering clients creative solutions to complex US and Canadian immigration and nationality law issues. And NPZ Law Group founder and managing attorney joins me, David Nockmans here. Namaste, David.
17: Namaste, Adab, Sat Sri Akal, and Kem Cho to you, Vijaya, and to all our
16: I love that greeting.
17: At Radio Mirchi.
16: Yeah, it makes everything right with the world right now.
17: Just rolls right off the tongue, right?
16: Thank you, David. So I hear the USCIS is expanding its vetting process to other non-immigrant classifications. Is this true?
17: It is, and it's not great news, but unfortunately it is the way of the world. And before I get into a quick description for our listeners, I just want to point out a couple of things that, you know, have happened over the last week or so since our last show. And as many of you know, ICE is at the airports, so be aware. ICE is patrolling at the airports. We're not exactly sure why, but they are, of course, being paid under the Big Beautiful Bill, which millions and millions of dollars have been allocated to enforcement. So they are there. So this question, which we frequently get from our listeners, they need to be aware. Yeah. Also, I just want to mention that last week, as many of you know, the Supreme Court argued birthright. There was an argument before the Supreme Court on birthright citizenship. Yes. And President Trump attended that hearing and that argument. And we will keep you posted on anything that we hear. We're anticipating a determination on that issue by sometime in June. Mm-hmm. Also, I want to just let everyone know, of course, the H-1B lottery results are in, and my colleagues have discussed some of the issues, but I'm happy to report that the NPZ clients fared very, very well. Mm-hmm. We had a significant uptick in the picks that we got this year, so that's really, really nice for our clients. And, of course, now the H-1Bs will have 90 days to file their petitions. Mm-hmm. So the clock started ticking actually on April 1st. And so I just want to remind everyone, just so there's no confusion, that, of course, the registration salaries are not the same as the salaries for those on the LCA. So those salaries can be different. It's just that we hope that the LCA salary levels will be so we have to have like a match, but, you know, we have to be careful in the disparity of the salaries.
16: Yeah.
17: So going back to your question, Vijaya, so your question about DOS expanding online presence.
16: Yeah.
17: So it was recently announced, it was actually on March 25th, that what they're doing is they're extending the online presence review to A's, to C's, to G's, to H3s, H4s, K1s, K2s, K3s, Q's, R's, ST's, and U's. So basically, I don't know if you remember, but I think that our lawyers reported several months ago how this online presence vetting was going to go on. And I believe that the government used as a pretext something along the lines of the fact that they wanted to make sure that the individuals had the ability to support themselves. You know, so they were basically bootstrapping these vetting methodologies.
16: But
17: we want to remind our listeners who are going for any interviews at the U.S. Department of State to set their social media accounts to public and or to open, that they will, the government will likely entertain this deeper screening.
16: Oh, wow.
17: This is going to change sort of the way that we as immigration lawyers practice, both in the family-based area as well as in the humanitarian areas. Mm-hmm. And, you know, this is this type of expansion is not something that is, you know, something we didn't expect. And also, this announcement also is not by way of limitation. Mm-hmm. So we anticipate that this is going to be basically across the full spectrum of what we refer to as the alphabet soup of immigration, of non-immigrant visa processing at the U.S. consulates abroad. Mm-hmm. So strap yourselves in, everyone, even though they haven't announced this deeper vetting for B's, L's, E's, O's, and P's. We are likely to start seeing this much deeper vetting. And obviously, we'll keep our listeners apprised of any new developments that might occur in this area.
16: Yeah, so be cautious about what you post online and, you know,
17: always.
16: How you're... Yeah, well, thank you so much for that, David, for keeping us updated and really aware of everything that's happening around and being our eyes and ears while, you know, doing that. So, folks, whether you need a green card, employment verification assistance, or help with Canadian immigration, you can always rely on the NPC Law Group. Contact them today to discuss your immigration-related concerns. Just visit visaserve.com or call 201-670-0006, and there's a discount off your consult when you mention Mirchi. More with the Legal Eagles at the NPC Law Group, all about immigration matters. It's right here on Mirchi. Keep listening. It's hot.
0: Give me love and give me more. Thoda sa-

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Sharda, let's do not donkey, have a funky time.
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी और स्वागत है आपका वेंसडे की इस खूबसूरत शाम में। वैसे वेंसडे ना एक ऐसा दिन होता है जो यार ज्यादा बोलता नहीं पर सब कुछ समझ जाता है। मतलब मंडे का ड्रामा भी ये देख चुका होता है, फ्राइडे के प्लान भी ये जान लेता है, बस बीच में बैठ कर ना हमारे सारे प्लान्स को जज कर रहा होता है कि अच्छा बड़े बड़े वादे किए तुमने वीकेंड के, चलो देखते हैं कर भी पाओगे या नहीं। वैसे आज का दिन ना थोड़ा कंपोज्ड, थोड़ा स्मग जरूर लगता है, तो यार समझ जाओ वेंसडे अपना काम कर रहा है। आप भी बताओ दोस्तों, आज आप थोड़े कंपोज थे या कंपोज रहने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे? क्योंकि मुझसे पूछो तो यार मैं बहुत ही ज्यादा कंपोज्ड नहीं थी, लेकिन जब कभी भी शाम को आपके लिए धमाकेदार गाना बजाने का मौका मिलता है तब यार ये पूरी कायनात सारा कंपोजर मेरे लिए लेकर आती है। तो चलिए वही करते हैं, आपके लिए बजाते हैं ये अगला धमाकेदार गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Yabala. Burga, burga. La virpa, la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Hello, usko wahan se mat uthao, yaar. Hello.
1: हेलो
2: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब इसको वहां से मत उठाओ यार ऐसे नहीं उठाएगा यार टूट जाएगा सारा सामान टूट जाएगा वहां से मत करो उसको वहां से हेलो हेलो भाई साहब
1: हाँ जी बोलो
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते क्रेन
1: हाँ जी देते
2: एक सेकंड होल्ड करना उसको वहां से मत उठाओ यार मैं तेरे से बोल रहा हूँ दो टुकड़े हो जाएंगे सारे मत उठा नहीं उठेगा तेरे से ये सामान भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ ये मशीनें बंद कर दे मशीनें बंद कर दे सारी मशीन बंद कर दे शायद तो सारी बंद कर दे ये गिर गया है और इसको उठाना है यार ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई
1: कहाँ भिजवाना
2: है मैं आपको बता दूं नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है कितना सामान उठाता है
1: जी उठवा लेंगे उतना ही हम
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को हाँ ये आप ये भेज दो ये इसको इसको उठवा दो यार ये तो गिरा पड़ा यार ये इसकी वजह से सारी परेशान है
1: किसको जी
2: सेंसेक्स गिर गया है इसको उठवा दो आप
1: क्या गिर गया
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो सेन नीचे रह जाए तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी
1: भाई साहब क्या उठवाना है
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको
1: सामान
2: उठवा या, तो मार्केट गिर गया यार मार्केट गिर गया उसमें सारे परेशान है यार आप उठवा नहीं सकते तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ सेंसेक्स गिर गया यार
1: उठवाना है
2: तीन क्रेन भेज दो सेंसेक्स उठवा दो यार कब से गिरा पड़ा हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और फोन मत काटिएगा ना आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते मार्केट की बात कर रहा था क्रेन किराए पे देते हैं आपका मुर्गा बन गया आप रेडियो मिर्ची पे हैं हेलो
1: कहाँ से बोल रहे
3: हैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी दीप खाओ तो जानो
8: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: I don't need to tell you, New Yorkers are paying more for everything. Rent, utilities, groceries, every single month. The office that's supposed to protect us? It's on the sidelines. I'm Raj Goyal. As an ACLU lawyer, I fought for the people against powerful interest every single day. Now I'm going to be your affordability watchdog. I'll take the pension fund out of the greedy hands of Wall Street and put it back into affordable housing. Holding utility companies accountable and auditing waste and fraud.
13: Raj Goyal, affordability watchdog for Comptroller.
14: Paid for by Raj Goyal for New York State Comptroller.

DJ.

0: It's 5:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey, have a funky time.
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और आज का हंगामा आ रहा है दिल धड़कने दो मूवी के गल्ला गुड़िया गानों से। वैसे यार ये गाना स्क्रीन पर तो फुल ऑन फैमिली मस्ती लगता है, मतलब सब नाच रहे हैं, कैमरा घूम रहा है, एनर्जी नॉन स्टॉप है। पर पर्दे के पीछे असली कमाल ये था कि डायरेक्टर जोया अख्तर ने इस गाने को एक टेक में शूट किया है। जी हाँ, इसके लिए हर जो एक मूवमेंट था वो प्लान था, हर कैमरा टर्न प्लान था, हर एक्टर की एंट्री एग्जिट और कोरियोग्राफी डिटेल में रिहर्स की गई थी। तो कैमरा जब चालू हुआ यानी रोलिंग जब चालू हुई, उसके बाद पूरा गाना खत्म होने के बाद ही वो रोलिंग बंद की गई थी। और जोया अख्तर ने खुद कहा था कि इतनी प्लानिंग और मैनेजमेंट हुई थी तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। तो सोचिए दोस्तों, हम तो कभी कभी ऑफिस में अपने बॉस को अगर छुट्टी मांगनी है तो एक स्ट्रेट वॉइस नोट भी एक टेक में रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा कास्ट, मूविंग कैमरा, डांस, टाइमिंग, एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम सिंक में चल रहा था। मतलब यार स्क्रीन पर जो फुल चिल फैमिली वाइब लग रही थी ना, उसके पीछे स्टॉप वॉच लेवल डिसिप्लिन और टीम वर्क था। तो ये बात तो बहुत जाहिर सी है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सबसे नेचुरल दिखने वाली चीज उसके पीछे सबसे ज्यादा प्लानिंग होती है। तो दोस्तों आप भी मुझे बताना कैसा लगा आपको ये पर्दे के पीछे का किस्सा, और ऐसे ही गानों के पर्दे के पीछे के किस्से जानने के लिए मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल ये वन टेक का कोरियोग्राफ किया हुआ गाना सुनते हैं गल्ला गुड़िया फ्रॉम दिल धड़कने दो राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
3: Chamakte Sitare 2026.
2: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

अगर फलों में किसी को अवार्ड देना हो ना तो इस एक फ्रूट को जरूर मिलना चाहिए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए ना, जहाँ इतने सारे फल है, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, वह हर इंसान का दोस्त अगर कोई एक फ्रूट है तो वो है बनाना। अब जाहिर सी बात है, बनाना हर स्टोर में ईजिली अवेलेबल होता है, ज्यादा महंगा भी नहीं होता, कुछ नखरे नहीं, जैसे कि ना काटना पड़ता है ऑरेंज की तरह, ना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अनार की तरह, बस उठा लो, पील करो और खा लो। और अगर ऐसे सीधा साधा नहीं पसंद तो स्मूदी बना लो, डेजर्ट बना लो, या मेरे फेवरेट डीप लॉन्ग बनाना चिप्स फॉर्म में खा लो। और एक नहीं, उसमें भी तीन तीन वैरायटी, प्लेन चिप्स, ब्लैक पेपर चिप्स एंड रेड चिली चिप्स। तो हर फॉर्म में आपको मिलेगा 100% नेचुरल क्रिस्पी बनाना चिप। और अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो अपने नजदीकी इंडियन स्टोर से ले आइए हेल्दी एंड क्रिस्पी डीप बनाना चिप्स, और मुझे जरूर बताइए कि आपको बनाना का ये अंदाज पसंद आया या नहीं। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो यार इतने सारे बॉलीवुड सिंगर्स हैं और उनके सोलो सॉन्ग्स भी बहुत ही अमेजिंग होते हैं, लेकिन जब ये साथ मिलकर कुछ साथ गाने गाते हैं, कुछ डुएट्स बनाते हैं, तो ओ हो वो दिल को छू जाते हैं। एंड वन सच जोड़ी इज मोहित चौहान और श्रेया घोषाल। जी हाँ, इतने खूबसूरत गाने इनके बने हैं बॉलीवुड में। एंड वन सच ब्यूटिफुल सॉन्ग इज 2012 की मूवी जब तक है जान का सांस। जी हाँ, AR रहमान का कॉम्पोजिशन है, जिसमें मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने इस रोमांटिक ट्रैक को अपनी सोलफुल आवाज़ से भी और भी खास बना दिया। और ये गाना वैसे तो शाहरुख खान और कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया है, जिसमें अब पहली बार वो दोनों साथ में आए थे और उनकी केमिस्ट्री और सिंगर्स की आवाज़ का परफेक्ट ब्लेंड देखने मिला था। तो चलिए अभी हम सुनेंगे सांस फ्रॉम जब तक है जान। लेकिन आप मुझे बताइए कि इन दो जोड़ियों की ऐसी कौन सी ब्यूटीफुल मेलोडीज है जो आपको बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक सुनते हैं जब तक है जान का गाना सांस, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskaba la puskaba la sakaba la.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La virba la murga.
2: Mirci, murga.
3: Hello,
4: Mr. Gotham.
3: कौन बोल रहे हैं?
4: सर, मैं एक्चुअली आप सर रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ. आप सुना आप वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर? तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था तो स्नेक कहीं घुस गया था. तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ. सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन के सर नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: हाँ, सर कुछ गा के
4: सुने? हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना? कोंडा आपने ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: एक काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो.
4: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
3: कौन से गाने
4: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. एक पेशकश करूँ. तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा.
3: सुन ले बात
4: मेरी.
3: सुन पहले बात.
4: हाँ सर.
3: और जब बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर.
4: सर बोलिए.
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
4: जी सर.
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

0: Hit के साथ only on मिर्ची. It's hot.
1: Yeah, पटाक.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
5: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
3: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
6: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
9: Chamakte Sitare 2026.
8: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
10: Listener MA, back-to-back gana sunega.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
12: Let's do not donkey, have a funky time.
13: सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में. वेदर इज गेटिंग वार्मर, लेकिन यार ये तो एक बहुत ही राहत की बात है ही. उसी के साथ साथ हमारे गोल्डन आवर में भी एक राहत की बात आने वाली है, और वो क्या होने वाली है चलिए पूछते हैं हमारे गोल्ड डिकोडर सीरीज में हमारे गोल्ड एक्सपर्ट से, बॉबी बंसल जी फ्रॉम राज ज्वेल्स. नमस्ते बॉबी जी, वेलकम टू दिस वंडरफुल इवनिंग.
14: नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू यू सिद्धी जी. And a warm, beautiful evening to everyone. सिद्धि जी, मैं आपको पहले बता दूं, आज की खुशखबरी ये है कि गोल्ड के प्राइजेस $4,500 का प्राइस ब्रेक करके $4,450, $4,450 पर ट्राई ऑन ट्रेड कर रहे हैं. मार्केट कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर है, और पिछले कई महीनों की अगर बात की जाए तो गोल्ड वाकई ही एक ड्रॉप पे है और एंट्री पॉइंट बनती है. जिन दोस्तों ने मेमोरियल डे की सेल एंजॉय नहीं की, उनको गोल्ड प्राइस ड्रिप के साथ एक एंट्री पॉइंट बनता है. तो राज ज्वेल्स के साथ आइए, प्रीमियम गोल्ड बार जैसे पैम के, सोने के हों या चांदी के, सिल्वर और गोल्ड अवेलेबल एट राज ज्वेल्स. सिद्धि जी, मैं तैयार हूँ आपके क्वेश्चन के लिए.
13: देखिए बॉबी जी, वैसे तो आपने अब भी जब बताया कि गोल्ड प्राइसेस ड्रॉप हो चुके हैं, और एक बहुत ही अमेजिंग बात होती है न्यूजर्सी की या फिर एनआरआईज की, कि एक तो पूरे यूएस में आप शिपिंग प्रोवाइड करते हो, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात जो ये है कि यहाँ पर दो दो फेस्टिविटीज साथ में सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है. मतलब ऐसे जब जैसे कि मेमोरियल डे है उसमें सेल्स तो मिलते ही है, उसी के साथ साथ कभी कोई इंडियन फेस्टिवल होता है उसमें भी हमारा बोलते ना वो डबल धमाका हो जाता है. तो उसी के लिए आप जिन्होंने भी मेमोरियल डे सेल या ऑफर्स मिस किए हैं उनके लिए क्या स्पेशल ऑफर है, क्या वो अभी भी जारी है, प्लीज हमें बताइए.
14: देखिए, मेरा तो सब दोस्तों को एक ही बात कहता हूँ, जो दूर से आते हैं, क्योंकि लिटिल इंडिया ऑफ रोड ना, हम सारे दोस्तों का पराया बसाया हुआ एक प्यारा सा छोटा सा इंडिया है. और सिद्धि जी, हमारा तो एक ही वादा रहता है. देखिए, आज जैसे गोल्ड के प्राइस गिरे हैं ना, तो मैं दोस्तों को बोलता हूँ जिस दिन आपको बनानी हो आप शॉपिंग करने आ जाना, हम आपके लिए धनतेरस और दिवाली उस दिन सेलिब्रेट कर लेंगे. सो ये सिर्फ एक बहाना होता है. मुझे लगता है कि डील्स एंड ऑफर्स ये एक छोटा सा इंसेंटिव होते हैं, असली इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो गोल्ड का प्राइस होता है. आज सबसे अच्छी डील ये है कि जो गोल्ड का प्राइस है वो अबाउट $50 पर ट्राइऑन्स ड्रॉप करा है कल से. सो मुझे लगता है वो एक इटसेल्फ इज अ बिग इंसेंटिव फॉर पीपल टू कम एंड बाय एंड इन्वेस्ट इन गोल्ड. और बाकी सिद्धि जी, जैसे मैंने आपको बोला, जब आपका दिल करे आइएगा राज ज्वेल्स में, हम दिवाली मनाते हुए आपकी मेमोरीज में मेमोरियल डे को भी यादगार के रूप में मना देंगे. सो दोस्तों को राइट क्वालिटी राइट प्राइस के साथ अगर ऑफर की जाए तो एवरी डे मेमोरियल डे है. सो आइए मिलकर सेलिब्रेट करते हैं लाइफ के पेजेस पर rajjewels.com. थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल.
13: क्या बात है बॉबी जी. तो दोस्तों इसी के साथ आज ही विजिट कीजिए rajjewels.com और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट.
1: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल.

संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हमारी बातें हो रही है कि यार संगीत के वर्ल्ड में यानी बॉलीवुड म्यूजिक में ऐसी कौन सी जोड़ियां थी, ऐसी कौन सी हिट जोड़ियां थी जिनके डुएट सुन के हम तो यार मतलब खो ही गए। तो जी हाँ, एक ऐसी जोड़ी है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की, और उन्हीं के कुछ गानों के बारे में बात हो रही है। एंड वन ऑफ देयर सॉन्ग्स विच इज माई फेवरेट यार इज दिस लव, 2008 की एल्बम किस्मत कनेक्शन का गाना है। प्रीतम के म्यूजिक डायरेक्शन में बना ये गाना शाहिद कपूर और विद्या बालन पर फिल्माया गया था। और यार मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज ने इस गाने को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। जी आज भी ये गाना मेरा फेवरेट है। एंड यू नो ये जो ब्यूटीफुल मेलोडी है इज दिस लव, वो इतना प्यार लेके आता है, ऐसा लगता है कि बस जब तुम प्यार में होते हो तो शायद यही गाना सुनते होंगे। तो चलिए आज ये गाना बजाते हैं श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाज में। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस डुओ, टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए किस्मत कनेक्शन का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
4: Chamakte Sitare 2026.
3: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और वैसे तो यार बॉलीवुड में इतनी सारी जोड़ियां बनती है, लेकिन बॉलीवुड म्यूजिक ने भी काफी ऐसे डुओज दिए हैं हमें, जिन्होंने जब साथ आकर गाने गाए तो ओहो चार चांद लगा दिए। तो जी हाँ, ऐसा ही एक डुओ जो है वो है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल का। और वैसे तो उनके इतने सारे गाने हैं जिनके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सॉन्ग विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल मेलोडी इज फ्रॉम द मूवी आरक्षण, जो 2011 में आई थी। उसका गाना जो शंकर एहसान लॉय का कंपोजिशन है, अच्छा लगता है। जी हाँ, मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने इस गाने को अपनी मेलोडियस आवाज दी थी और भी खास बना दिया था। वैसे तो ये गाना फिल्माया गया है दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान पर, और उनकी केमिस्ट्री इस गाने में, मतलब होता है ना आंखों आंखों में इशारे होना, वही कुछ इस गाने में दिखाई दिया था। लेकिन द ब्यूटिफुल म्यूजिक एंड द ब्यूटिफुल वॉइस ऑफ मोहित चौहान एंड श्रेया घोषाल वॉज अनफॉरगेटेबल। तो चलिए आज सुनते हैं अच्छा लगता है फ्रॉम आरक्षण, और आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स जो गाया गया है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की जबरदस्त जोड़ी ने। और ऐसी कौन सी बॉलीवुड म्यूजिक की और कोई ऐसी जोड़ी है जो आपको बहुत पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आरक्षण का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और हमारी यहां पे बातें हो रही है। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड म्यूजिक के धमाकेदार डुओस के बारे में बातें हो रही है और आज का जो धमाकेदार डुओ था वो था श्रेया घोषाल और मोहित चौहान का, जिनके हमने इतने सारे गाने सुने और एक गाने की रिक्वेस्ट भी आई है। जी हां दोस्तों, गाने की रिक्वेस्ट आई है रोहन से, जो कि रहते हैं जर्सी सिटी में और उनको भीगी सी भागी सी गाना बहुत ही ज्यादा पसंद है फ्रॉम द मूवी राजनीति, जो गाया है इस जबरदस्त दस डुओ ने, विच इज मोहित चौहान और श्रेया घोषाल। तो चलिए सुनते हैं भीगी सी भागी सी गाना फ्रॉम राजनीति राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों, अगर बॉलीवुड म्यूजिक के और भी धमाकेदार डुओ के बारे में आपको जानना है तो मुझे जरूर बताइए विच इज योर फेवरेट म्यूजिकल डुओ इन बॉलीवुड। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए राजनीति का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vizba la burga. Milci, burga.
1: Alo.
2: Alo, usko maa se mat uthao, yaar. Alo.
1: हेलो
2: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब इसको वहां से मत उठाओ यार ऐसे नहीं उठाएगा यार टूट जाएगा सारा सामान टूट जाएगा वहां से मत करो उसको वहां से हेलो हेलो भाई साहब
1: हाँ जी बोलो
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते क्रेन
1: हाँ जी देते
2: एक सेकंड होल्ड करना उसको वहां से मत उठाया मैं तेरे से बोल रहा हूँ दो टुकड़े हो जाएंगे सारे मत उठा नहीं उठेगा तेरे से ये सामान भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ ये मशीनें बंद कर दे मशीनें बंद कर दे सारी मशीन बंद कर दे शायद सारी बंद कर दे ये गिर गया है और इसको उठाना है यार ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई
1: कहाँ भिजवाना है
2: मैं आपको
1: बता दो
2: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है कितना सामान उठाते
1: हैं जी उठवा लेंगे उतना ही हम
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को हाँ ये आप ये भेज दो ये इसको उठवा दो यार ये तो गिरा पड़ा यार ये इसकी वजह से सारी परेशान है
1: किसको जी
2: सेंसेक्स गिर गया है इसको उठवा दो आप
1: क्या गिर गया
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो सेन नीचे रह जाए तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी
1: भाई साहब क्या उठवाना है आपको
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको
1: सामान
2: उठवा
1: क्या मजाक कर रहा है
2: तो मार्केट गिर गया यार मार्केट गिर गया उसमें सारे सारे परेशान है यार आप उठवा नहीं सकते तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ सेंसेक्स गिर गया यार
1: उठवाना है
2: तीन क्रेन भेज दो सेंसेक्स उठवा दो यार कब से गिरा पड़ा है हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और फोन मत काटिएगा मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते मार्केट की बात कर रहा था क्रेन किराए पे देते हैं आपका मुर्गा बन गया आप रेडियो मिर्ची पे हैं हेलो
1: कहाँ से बोल रहे
3: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेह पूर्ण आमंत्रण शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति अधिक जानकारी के लिए 7323578200 जय गुरुदेव
8: Did you know many communities across NJ12 feel underrepresented in Washington? Now, NJ12 has a rare open seat opportunity that may come only once in decades. Sujit Singh is running for the Democratic nomination for Congress in NJ12. Rooted in NJ12 for the past 15 years, Singh earned the trust of more than 5,000 residents in last November's election. Sujit believes every community deserves a voice in Washington. Please vote for Sujit Singh in this Democratic primary. Return your mail-in ballot if received. Early voting, May 26th through May 31st. Election Day, June 2nd. Learn more at singforcongress.org. Paid for by Sujit Singh for Congress.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
11: Chamakte Sitare 2026.
10: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.

दोस्तों बॉलीवुड का ना एक इंटरेस्टिंग फेज चल रहा है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, थिएटर्स वापस फुल हो रहे हैं, पर ऑडियंस बदल चुकी है। अब लोग हर फिल्म के लिए थिएटर्स नहीं जाते, सिर्फ उन फिल्म्स के लिए जाते हैं जो एक्सपीरियंस देती है। जैसे जब कोई बिग स्केल एक्शन या विजुअल स्पेक्टेकल आता है ना, तब लोग बोलते हैं कि यार इस मूवी को तो थिएटर में ही देखना चाहिए। लेकिन बाकी कॉन्टेंट OTT पे इक्वली स्ट्रांग चल रहा है। मतलब बॉलीवुड अब दो ट्रैक्स पर चल रहा है, इवेंट सिनेमा और इंटीमेट स्टोरी टेलिंग। तो आप भी बताओ दोस्तों कि आप थिएटर जाने के लिए क्या चूज करते हो, स्टोरी या स्केल? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
6: नमस्ते इस्लाम एंड सत श्री अकाल भाई और बहनों. आई एम सुजीत सिंह रनिंग फॉर कांग्रेस इन NJ12. ए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग योर वॉइस टू वाशिंगटन. विजिट singforcongress.org एंड गेट एंगेज्ड.
7: June 2nd 2026. Early voting dates May 26th to May 31st. Sujit Singh is the change we need.
6: Paid for by Sujit Singh for Congress.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
10: Chamakte Sitare 2026.
9: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
11: Batting to kafi sare karte hain. Virat.

0: It's 7:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shardar, let's do Nautanki, have a funky time.
2: एक महीना, सिर्फ एक महीना भी काफी है जिंदगी बदलने के लिए। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और चलिए आज बात करते हैं नई बिगिनिंग्स की। कभी सोचा है कि एक छोटी सी ट्रेनिंग आपको एक बड़ा करियर दे सकती है? जी हाँ, फ्लेबोटॉमी टेक्नीशियंस, हाँ वही लोग जो हॉस्पिटल्स में हर दिन केयर का पहला कदम होते हैं। AIMS एजुकेशन में सिर्फ एक मंथ की ट्रेनिंग प्रोग्राम है और आप भी बन जाते हो हेल्थ केयर फील्ड के एक इंपॉर्टेंट हिस्सा। ऑनलाइन और कैंपस दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल भी है और ड्यूअल।

भी। तो अगर आप भी एक सेफ, केयरिंग और सिक्योर प्रोफेशन चाहते हो तो आज ही कॉल कीजिए AIMS एजुकेशन एट 9082220002 या फिर विजिट कीजिए AIMSeducation.edu और डिस्कवर कीजिए वो एक सिप ऑफ चेंज जो आपकी जिंदगी में केयर और ग्रोथ दोनों लाएगा। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये आइकॉनिक लाइन मैंने प्यार किया की भी थी और ऑल्सो मैं उस दिन वेन हैरी मैच साली देख रही थी और उसमें हैरी इज टेलिंग साली की एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, तो शी सेज क्या बात कर रहा है, टू विच ही सेज कि इन दोनों लोगों में से एक लड़के और लड़की में से वन ऑफ देम विल हैव फीलिंग्स ऑफ इंटीमेसी अबाउट द अदर पर्सन और वहीं दोस्ती एक नया मोड़ ले लेती है। अब माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या आपको भी यही लगता है कि अगर एक दोस्ती में एक लड़का और लड़की दोस्त हैं भी तो भी एट सम पॉइंट वन ऑफ देम विल स्टार्ट हैविंग फीलिंग्स फॉर द अदर पर्सन, हाँ या ना? एंड टू टेल मी द आंसर टू दैट वन, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो गो अहेड डार्लिंग, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना, सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।